0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम
0: मिस कर दिया तो रीलोड
2: चाहे चाहे चाहे
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: बसंती इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग है जी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, आपने ट्यूनिंग कर लिया है मुरादाबाद शहर का अपना पहला इकलौता रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो यानी कि फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:19। मैंने यहाँ पर दे दी है एंट्री। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी का, वेलकम बैक है जी। कैसे हाल चाल है श्रोताओं? कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही कभी होना चाहिए। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो बनती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अगर आपके पास ये है ना, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप बेसिकली चाहते हैं।

0: तो दोस्तों बहुत ही खूब है आज और बहुत ही प्यारी सी सुबह है, दिन है आज मंगलवार का। जय श्री राम। प्रभु का नाम लेकर करते हैं आज के बेहतरीन से सफर की शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 8:20 हो गए हैं, देखिए पता नहीं चल रहा है। और आज 7 जुलाई की तारीख है, 7वां महीना है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। और जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आज के दिन आपको मिले। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिंदगी में अगर कोई अप्स एंड डाउन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई होप वो जल्दी से दूर हो जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है, ईश्वर करे वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही मजे के साथ, अच्छे जोश और जुनून के साथ जो है जीते चले जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल एक खूबसूरत ट्रैक के साथ करेंगे आज के बेहतरीन से सफर की शुरुआत। अंदाज अपना अपना का ये बेहतरीन ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके लिए।
1: ये रात और ये दूर,
0: इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

वेलकम बैक यू वंस अगेन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात, नमस्कारम, कैसे हाल चाल है आपके? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज, मंगलवार का, दिस इज ट्यूजडे की सुबह। आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बिल्कुल आपके सफर का साथी आनंद बन चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले कुछ घंटे आपके साथ ये कंपनी देने वाला है एंड ऑफकोर्स आपकी सुबह अच्छी होने की जो जिम्मेदारी वो मेरी होती है यार। अब मुरादाबाद को किस तरीके से एनर्जेटिक रखना है, मुरादाबाद की एनर्जी को, उसकी वाइफ को कैसे मेंटेन रखना है, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। आज 7 जुलाई की सुबह वक्त हो रहा है 8:34, घड़ी अपनी सेट कर लो यार। घड़ी घड़ी में जो वक्त होता है मैं एकदम करेक्ट आपको बताता हूँ। फिलहाल गर्मी आज बहुत भयंकर वाली हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी भयंकर गर्मी है मतलब कि आपको ना, अगर आप किचन में जा रहे हो तो आप इसको बिल्कुल महसूस कर सकते हो, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो भी आप महसूस कर सकते हो। मतलब धूप बहुत भयंकर वाली नहीं है बट गर्मी जो यू नो तपिश है वो बहुत अलग लेवल की हो रही है। आज ह्यूमिडिटी बहुत जो है अलग होने वाली है, अब आज आपको बहुत चिपचिपी टाइप की गर्मी फील होगी। 70% ह्यूमिडिटी है एंड हवाएं जो है 6 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। चलिए फाइनली कुछ तो रिलीफ मिलने वाला है, एयर क्वालिटी बेटर से थोड़ी सी बेटर हो सकती है बट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। एंड अभी जो करंट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, ये आगे जाके 35 तक हो सकता है। वेदर शाम तक चेंज होगा, हल्की फुल्की बारिश की भी यहाँ पर दिखाई जा रही है, मुझे अपडेट मिल रही है बट आई डोंट नो यार ये बारिश होगी भी या नहीं। वेदर जो है वो क्या से क्या हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये वेदर अपडेट मैंने आपको फटाफट दे दिया, आप मेरे साथ जुड़ो ना यार 9837896896। स्टूडियो का नंबर कितना सिंपल, इस नंबर पे आप मुझे फटाफट से अपने हालचाल पहुंचाओ। जैसे कि अभी मेरे पास गीतिका जी ने अपना मैसेज पहुंचा दिया है, ये मुझे बसंत बिहार से मैसेज करती हैं, लिखती हैं आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आई एम वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी गुड मैम। लिखती हैं सुबह सुबह आपके प्रोग्राम सुन के ना बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अरे वाह क्या बात है, एक विचार मैं भी साझा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, इन्होंने आगे लिखा है कि बदलाव से मत डरिए, कई बार वो ही आपको एक नई शुरुआत की ओर लेकर जाता है। तो आनंद जी की जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो थोड़े से बड़े बदलाव तो लाने पड़ेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। एक मैसेज और आ गया जुल्फी भाई के, लिखते हैं हेलो आनंद कैसे हो मेरे भाई, आई एम वेरी गुड जुल्फी भाई, थैंक यू सो मच। एक इमोजी इन्होंने शेयर किया और साथ में एक पिक्चर शेयर की है, जिन्होंने लिखा है कि दोस्त किताब रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और अगर सही हो तो जीवन बना देते हैं। माइंड ब्लोइंग यार जुल्फी भाई, कमाल कर दिया यार, इतनी शानदार और पॉजिटिव लाइन बोल के तो आपने मजा ही कर दिया। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग, शिखा बात कर रही हूँ मानसरोवर से, हेलो हेलो आनंद हाउ यू, आई एम वेरी गुड शिखा मैम, थैंक यू सो मच एंड हाउ यू डूइंग, आप बताओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया चलना चाहिए यार, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ी। आप लिखती है यार तेरे गाने बहुत ही अल्टीमेट होते हैं, क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। इसी बात पे मैं एक और बहुत ही बढ़िया गाना आपको आपके लिए प्ले करूंगा, आपको ना एक गाने की तरफ लेके जाऊंगा, ये गाना आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक की तरफ ले जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। एक तो यार दिन इतना बढ़िया है, ट्यूजडे की सुबह है, एक नई ब्रांड न्यू मॉर्निंग है एंड मैं आपको सच बताऊं मंडे से जब दूसरा वाला दिन आता है ना तो ऐसी अच्छी वाली फीलिंग आती है यार। पीसी का एक गाना है, दिस इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट ट्रैक, बहुत ही प्यारा ट्रैक, ऑल टाइम फेवरेट है, समझ आ गया होगा आपको। सुनिधि चौहान की माइंड ब्लोइंग वॉइस, आनंद राज आनंद ने इस गाने को लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, देव कोहली ने लिखा है, माफी चाहूंगा, और इसको म्यूजिक दिया है आनंद राज आनंद जी ने, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक। पिक्चराइजेशन है पीसीएन बॉबी देवल साहब, यानी कि प्रियंका चोपड़ा और बॉबी साहब के ऊपर पिक्चराइजेशन था, गाना बहुत ही अल्टीमेट है। चलो यार मैं थोड़ा सा पानी शानी पी के आता हूँ, अभी मेरा गला थोड़ा सा जो है सूख रहा है, तो मैं काम करता हूँ मैं पानी पीता हूँ, आप चाय पियो और साथ में गाने सुनते हैं, लौट कर आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा 7 जुलाई क्यों खास है मुरादाबाद आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: उदित साहब की आवाज लता मंगेशकर दे रही थी साथ, ऑल टाइम फेवरेट गाने से बनाओ कि हर जनरेशन को कर दे नौजवान, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये उसी में से एक गाना है। 8:47 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ हैं। दिस इज ट्यूजडे की सुबह, बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही प्यारी सी तारीख है, और आज की मॉर्निंग आप सभी को एक बिग शाउट आउट देना तो बनता है यार।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और दिल से कहिए जियो बिंदास।
0: देखिए जी, वंस अगेन विदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप, 8:50। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। आज का दिन क्यों खास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है आज की तारीख में, आज 7 जुलाई को क्या कुछ स्पेशल रहा है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे RJ आनंद को। ये वो रेडियो स्टेशन है जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी वो कड़क अपडेट मिलती है जो आपके आसपास चल रही होती है, चाहे अपने मुरादाबाद की हो या फिर अपने देश विदेश की हो। श्रोताओं आपको बता दें 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है आज के दिन वो मिली। और आपको बताते चले आज के दिन बहुत ही खास चीज एक और हुई है जिसके बारे में बात करना बनता है। अमेरिका के दूरसंचार उपग्रह डायरेक्टर V-10 के रूस को प्रोटेन एवं एक रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित जो है आज के दिन प्रक्षेपित किया गया था श्रोताओं आज के दिन। और आपको बताते चले आज के दिन गुरु हरकिशन सिंह जो सिखों के 8वें गुरु थे उनका जन्म हुआ था 1656 को आज के दिन। एंड मोहम्मद बरकत उल्ला जी का जन्म हुआ जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, सन 1854 को आज के दिन इनका भी जन्म हुआ था। श्रोताओं चंद्रशेखर वैग जी का जन्म हुआ सन 1922 को जो भारतीय सिनेमा अभिनेता थे। श्रोताओं आज के दिन हम बात कर रहे हैं आज के दिन के बारे में जो आज के दिन को और भी स्पेशल बनाते हैं। क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके बारे में बात करना तो बनता है, जिनका जन्म आज हम सेलिब्रेट करते हैं जन्मदिन, ये 1981 को जन्म हुआ था महेंद्र सिंह धोनी जी का, जो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं, हर कोई जो है ऑफकोर्स इनके बारे में जानता है।

श्रोताओं, आज के दिन से जुड़ी ऐसी तमाम सारी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। आज ढेर सारे स्पेशल दिवस भी मनाए जाते हैं जिसपे हम बात करेंगे अभी। एंड अनिल जी के बारे में बात कर लेता हूँ, जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं। सन 1914 में इनका भी जन्म हुआ था। श्रोताओं, आज ही के दिन सागर अलावत, जो राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले मुक्केबाज बने, सन 2000 में इनका भी जन्म हुआ। श्रोताओं, आज ही के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो हमने आप तक साझा करी हैं। अब बात करेंगे मुरादाबाद शहर में क्या स्पेशल हो रहा है, इस पे जरूर हम अभी आपके साथ चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही आरजे आनंद को सुनते जाइए। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्पेशल शेयर करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे मैसेज के जरिए जो है अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर, जो है अपनी प्यारी प्यारी बातें डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। और अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सवाल है जिसका जवाब आप मुझे देंगे। लेकिन ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं रिहाना जी, साथ ही साथ ग्राम बीजना से उस्मान टेलर जी जुड़ गए हैं आज की सुबह। सहारनपुर से जोन रोजी पल विलीस जुड़े हैं, लिखते हैं, कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना, इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। आनंद जी, बात तो खैर आपने सही कही है जनाब। चलिए, वेल, थैंक यू सो मच। अब आपने ये बात कर ही दी है तो मुझे जो है इस पर कुछ और बोलने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल एक खूबसूरत ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और लौट कर आएंगे तो फिर और कुछ बातें करेंगे, आपको और भी जानकारियां बताएंगे इसी स्टेशन पर। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मौसम अच्छा हो रहा है, प्यारा हो रहा है, इस मौसम का आनंद लेते रहिए। लेकिन गर्मी से तो राहत तभी मिलेगी बाबा जब थोड़ी सी बारिश अच्छी वाली हो जाए। फिलहाल मैं थोड़ा सा वेदर चेक करके आता हूँ क्या कहता है आज का मौसम, तब तक आप इंजॉय कीजिए बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर निकल गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ढेर सारे श्रोता साथी लगातार जुड़े हैं। एक मैसेज और आ गया है हमारी ओर से, प्यार भरा नमस्कार, लिखते हैं, क्या भलाई को पता होगा कि अब उसका जमाना नहीं रहा। पता करके बताता हूँ भाई साहब। फिलहाल एंजॉय करिए इस गाने को, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। आप सुन रहे हैं आनंद को, वक्त हुआ है 8:54।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: बेहतरीन ट्रैक आय हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हो गया है स्टेशन क्लॉक में 9:03। आप आनंद को सुन रहे हैं यार, प्यार करते करते मैं कहाँ पहुँच गया आपके साथ, मुझे पता ही नहीं चला भाई।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय,
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
0: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
4: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: कॉल 9045912348।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
4: मॉर्निंग। बिल्कुल जी, बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप, और देखिए कैसे जो है अगले घंटे में मेरी और आपकी एंट्री हो गई है, पता ही नहीं चल रहा यार, बहुत तेजी से जो है ये वक्त निकलता है। खैर एनीवेज, जो वक्त के साथ चलते हैं उनकी जीत जिंदगी में हमेशा होती है, ऐसा मैंने मेरी मम्मी भी कहती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक हियर वंस अगेन, 9:05 ट्यूजडे वाली सुबह आप आनंद को सुन रहे हैं। और भाई साहब, बड़ी सारे ना फैक्ट मैं चेक करता रहता हूँ, बहुत सारी रियलिटी टेस्ट मैं करता हूँ, एंड बहुत सारे जब मैं फैक्ट को चेक करता हूँ तो मुझे लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। आज के बहुत सारे मैं फैक्ट लेकर आया हूँ जो मैंने आज जो है चेकआउट किए, बहुत सारे फैक्ट जो है पता किए, इस पर डेफिनेटली बात करेंगे अभी हम थोड़ी सी देर में। और मेरे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन भी है आपके लिए, डेफिनेटली उस पर हम चर्चा करेंगे। एंड मुरादाबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, एक रविवार पूरा परिवार, बेसिकली क्या है ये पूरा कैंपेन, इसके बारे में डेफिनेटली चर्चा करेंगे अभी हम। एक और बहुत ही लेटेस्ट खबर है मुरादाबाद से जुड़ी जो आपके साथ साझा करनी है मुझे। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे सरकार ने व्हाट्सएप को दे दी है समय सीमा जो है थोड़ी सी उसकी बढ़ा दी है, जो यूजर नेम वाला अभी एक न्यू अपडेट आया था उसको लेकर मैं जो है अभी आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग खबर, बॉलीवुड की एक्टर काजोल अभी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, किस चीज को लेकर डेफिनेटली अभी बताऊंगा। बहुत सारी कलक अपडेट है यार, बहुत है मेरे पास आज की सुबह आपको बताने के लिए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन भी है जिसका आंसर डेफिनेटली आप ही देंगे मुझे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से थैंक यू करता हूं। एक बड़ी प्यारी सी कहावत दिमाग में आ रही है कि अर्ज किया है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, चाहे तुम जितने अच्छे कपड़े पहन लो फिर भी लोग पूछते हैं आज तुमने ये क्या है पहना। ये मैंने क्यों बोला है, हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है जिन्होंने एक कुछ अलग फैशन को फॉलो करते हुए कुछ चीजों को फॉलो किया, उसके बाद वही सोशल मीडिया पे हो गया है भैया कमेंट बाजी, उनकी सर्कुलेट की जा रही है पिक्चर्स, एंड उस पर लेके जो है बहुत सारे बवाल सवाल मचे हैं। अभी क्या चल रहा है देश दुनिया में ये भी बताऊंगा मैं यार आपको। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अपने बचपन वाले टाइम को ना भूल गए हैं। जैसे आपके टाइम में बहुत सारे गेम्स होते थे, बहुत सारे खेल होते थे, जो आजकल के बच्चे ना बहुत मिस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों के जो बचपन में है ना वो वाली चीज़ें नहीं रही जो आप लोग अपने बचपन को सेलिब्रेट करके आए हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन से खेल हैं जो आपने अपने बचपन में बहुत खेले हैं, जो आपको लगता है आजकल की जनरेशन जो है ना, आजकल के जो बच्चे हैं उनके बचपन में बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है, तो आप ज़रा मैसेज करके बताओ। हो सकता है आज के पेरेंट्स जो अभी हैं ट्रेंड में, जो आजकल जेंजी जिन्हें हम नाम दे रहे हैं, हो सकता है भैया वो भी कहीं ना कहीं अपनी फ्लैशबैक को याद करें, या फिर जो भी छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को महसूस करें, फील करें, और शायद वो भी उस चीज़ को जीना चाहें, सेलिब्रेट करना चाहें। तो आप मुझे डेफिनेटली बताना आपने अपने बचपन में, अपने छोटे जब आप छोटे छोटे थे आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, कौन कौन से अपने बचपन में गेम्स को एंजॉय किए जो आज के बच्चों की बचपन से बिल्कुल गायब है। आजकल के बच्चों की तो मतलब जैसे मानो कि है ही नहीं, वो कहीं दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। बट मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर आप अपने बचपन की वो चीज़ें शेयर करेंगी तो शायद थोड़े से नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाए, और थोड़े से आप भी फ्लैशबैक में पहुंच जाएं, और जिनको नहीं पता कि पहले ये भी गेम्स होते थे शायद उनको पता लग जाए। मुझे आज भी याद है मैंने तो एक्चुअली जो छुपम छुपाई वाला गेम है भाई बहुत खेला है, वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट उस गेम में बहुत मजा आता था। ऐसे बहुत सारे गेम्स आपने खेले होंगे, तो आप डेफिनेटली बताना आपने अपने बचपन में कौन कौन से गेम्स खेले हैं जो आजकल के बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं। आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पे, मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई रियली होप कि आप मेरी इस बात से डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे। तो इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ आज की सुबह बहुत प्यारी है, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है बिंदास मॉर्निंग।
3: आने वाला गाना गुरु रंधावा की आवाज, सूट सूट, बहुत ही प्यारा ट्रैक। इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है ट्यूसडे की सुबह। अगर आप भी अपने बचपन की कोई मेमोरी शेयर करना चाह रहे हैं आज की सुबह, तो ये गोल्डन चांस आरजी आनंद आपको दे रहा है। आपके स्टेशन ऑफ द नेशन पे सूट करेगा बाजी आज आप पे, आपकी बचपन वाली वो सारी शरारतें जो आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो। फटाफट इमीडिएटली व्हाट्सएप करो, आई बी राइट बैक। इस गाने के उस पार कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ जी। आज कौन कौन से स्पेशल डेज मनाए जाते हैं उस पे बात करेंगे। चलो एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

8割がね。क्या बात है यार, ऐसे बेहतरीन गाने सुन के मजा आ जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद को सुन रहे हैं आप, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। बातें वही होती है जो आपका दिल चाहता है। ढेर सारे मैसेजेस आपके मुझ तक पहुंच रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच यार इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, आप सुबह अच्छी कर देते हो। काम की बात करें भाई जान के लिए आज का दिन बहुत खास है। आपको बता दें भैया, आज ही क्या दिन था जब भाईजान की फिल्म आई थी 2016 में, और जिसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। बजरंगी भाईजान के बाद ये वो दिन था जिसमें सलमान खान भाई को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म मिली थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसके बारे में बात करना बनता है। स्टारिंग बाय सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा, मूवी बहुत ही बढ़िया थी। एंड मतलब भारत में नहीं, इवन और बहुत सारे देश विदेशों में इस मूवी ने जो है, हमारे देश के साथ साथ अलग अलग विदेशों में भी तहलका मचाया इस मूवी ने। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फिल्म। इनफैक्ट पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर भी जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही, और ये फिल्म ने जो है दुनिया भर में 623 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन किया था, इतिहास रच दिया था इस फिल्म ने। एंड इसके फिल्म निर्देशक थे अली अब्बास जाफर जी, जिन्होंने जो है कमाल की मतलब इन किरदारों को पिरोया। दिस इज बहुत ही अमेजिंग, दिस इज एब्सोल्युटली फैबुलस मूवी। एंड अनुष्का एंड सलमान की बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये। कौन सी फिल्म की बात करूं मैं, आपको पता है, आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बताइएगा 9837896896। कौन सी फिल्म है जिसमें सलमान एंड अनुष्का एक साथ नजर आए थे, बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये। एंड इसमें कुश्ती का भी दिखाया गया था, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। सलमान खान पाजी की जो फिटनेस थी आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, डायलॉग्स डिलीवरी एब्सोल्युटली अमेजिंग, एक्शन सीन बहुत ही प्यारे थे। फैमिली मतलब एक फैमिली के साथ इस पिक्चर को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। सिनेमा घरों में जब इसने दस्तक दी तो लोगों ने खूब जो है इस फिल्म को पसंद किया, खूब जो है अप्रिशिएट किया, लोगों का दिल खूब जीता इस मूवी ने। एंड यू नो इसका जो ऑल ओवर क्लाइमेक्स था मूवी का, बहुत ही अच्छा था। गाने बहुत ही प्यारे हैं इसके गाने, ऑफकोर्स आप रेडियो पे भी सुनते हैं। सो ये आज का दिन बहुत ही अल्टीमेट है भाईजान के लिए, अपने आप में बहुत ही खास दिन है। 7th of July 2026 2016 में ये फिल्म आई थी, बहुत ही प्यारी। कौन सी मूवी की बात करूँ, आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं अनुष्का एंड सलमान की कौन सी फिल्म थी जिसमें वो दोनों एक साथ नजर आए थे। एंड बहुत ही यू नो खूबसूरत मूवी थी यार, गाने भी बहुत प्यारे थे। चलो जी, ये तो हो गई है अभी एक छोटे से सवाल की बात। वेल अभी बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट। मेरे को तो बहुत पसंद है यार, पहले से मेरे को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं खाता हूँ, कभी कभी खा लेते हैं यार। वेल आपको चॉकलेट पसंद है नहीं, ये आप मुझे बताना जरूर। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है, हर साल 7 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चॉकलेट डे अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट डे है, एंड इसको मनाने का रीजन क्या है डेफिनेटली बताऊंगा अभी। एंड चॉकलेट डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज मैक्रोनी डे भी मनाया जाता है। मैक्रोनी डे डेफिनेटली आप जानते होंगे यार, ये बहुत ही अल्टीमेट डे। कुछ छोटे छोटे डेज होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको बता दें 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, क्योंकि ये वो तारीख है जब 1550 में पहली बार चॉकलेट यूरोप में आई थी। एग्जैक्टली आज ही का दिन था जब ये चॉकलेट पहली बार 7 जुलाई को यूरोप में आई थी श्रोताओं, और पहला विश्व चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। इसे मनाना जो है बहुत ही आसान है, बस अपनी पसंदीदा चॉकलेट लाएं और आरजी आनंद को खिलाएं, आपका जो है दिन अच्छा हो जाएगा। I am just kidding, है ना, ज्यादा सोचने का नहीं अब उनको। और आज मैक्रोनी डे भी मनाया जाता है। जो लोग मैक्रोनी शिक्रोनी खाते हैं भैया, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है यार, बट चॉकलेट वाला तो बहुत ही अल्टीमेट डे है। कोई गाना है जो आपको लगता है चॉकलेट के ऊपर है, यार आनंद ये वाला गाना तो बजा सकता है आज, बहुत बढ़िया लगेगा तेरे शो पे, तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताना कौन सा गाना है जो आज चॉकलेट डे पे एकदम शूट शूट कर सकता है, जो शो को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकता है। आप मुझे बताओ जरा मैसेज करके 9837896896। चॉकलेट वाला डे है आज, तो कोई मीठा मीठा सा गाना मुझे पहुंचाओ। फटाफट से देखता हूँ कौन मुझे अच्छे से गाना सजेस्ट करेगा, फिर मैं उस गाने को डेफिनेटली प्ले करूंगा शो पे। अच्छा, मुरादाबाद में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है शुरू होने वाला है। इनफैक्ट इसकी बात हो रही है हर तरफ, मैं बात कर रहा हूँ एक रविवार पूरा परिवार, बेसिकली एक स्वच्छता की तरफ है ये इशारा। एंड बहुत ही अच्छा कैंपेन, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, इस पर डेफिनेटली बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, ऐसे ही आरजी आनंद को सुनते जाएंगे। अभी मैं लौट कर आऊंगा तो कुछ खास चीजें बताऊंगा जो शहर में चल रही है, बॉस उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अक्सर मैं और आप अवॉइड करते हैं, हमें वही तो नहीं करना है बॉस, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दे सकती हैं। जैसे अगला ही गाना जो आपको और ज्यादा हैप्पी कराएगा फील, बधाई होगा ट्रैक, बहुत ही प्यारा गाना, नेहा कक्कड़ एंड गुरुपाजी की आवाज, आयुष्मान खुराना क्या लगे तैयार, साथ में सानिया मल्होत्रा, बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक, तनिष बागची का म्यूजिक, साथ में एंजॉय करेंगे। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस गाने पे डांस करने में शाहरुख खान का भतीजा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डांस इतना बढ़िया करता था इस गाने पे, लेकिन अब भूल गया फिलहाल।

0: बनके।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम

0: अहमदाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहां हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
4: अरे आनंद इज बैक।

0: अनमूवेबल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज हो की जानू से भी आप एंजॉय कर रहे थे। इतना सोना सच में यार ये गाना आप सभी के लिए था। आप लोग इतने सोने इतने प्यारे हो यार, मतलब फैबुलस है, माइंड ब्लोइंग। मेरे मुरादाबादी बहुत अच्छे हैं यार, थैंक यू सो मच। एंड अभी आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर आपको देता हूँ फटाफट से। आपको बताते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाने में मुरादाबाद तीसरे नंबर पे है। इस मुरादाबाद में लाभार्थियों के नए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश में मुरादाबाद को जो एक अच्छी रैंक हासिल हुई है। प्रदेश भर में चल रहे इस विशेष अभियान जो है ये 14 अगस्त तक जारी रहेगा। एंड इस बात को लेकर जो है अपना मुरादाबाद आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में तीसरे नंबर पे है वो आया है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के कार्ड बनने का जो प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है और इस अभियान में जो है जून के महीने में तो अच्छे खासे जो है बनाए गए ही हैं और ये भी जो है लगभग 14 अगस्त तक जो है कंटिन्यू रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको बताते चले मुरादाबाद मंडल का रामपुर जिला भी यूपी के 5वें और बिजनौर जो है वो 6ठे नंबर पर दर्ज किया गया है। जून के महीने में जो है आपको बताते चले यूपी में 5,99,074 करके कुछ नए जो है आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो भाई साहब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संख्या है और मुरादाबाद अगर इस मामले में इतने अच्छे रैंक पर आए तो दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। एंड मुझे लगता है कि मुरादाबाद हर चीज में आना ही चाहिए यार, भले ही तीसरे नंबर पे आए, पॉजिटिव सोचो यार, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो कहता हूँ जो लोग रेडियो सुन रहे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो 14 जो है अगस्त तक ये प्रोसेस चलने वाला है। आप भी जो है आयुष्मान कार्ड के बारे में डेफिनेटली अगर जानना चाहते हैं तो हमारा शो आता है 12:30 सेहत से ही लाभ कहीं, जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं इन्हीं चीज के ऊपर। तो डेफिनेटली प्लीज उसे सुनिए, आपको ऐसी बहुत सारी कड़क अपडेट मिलेंगी। बाकी अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाके भी आप जो है एक बारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बॉस, आयुष्मान कार्ड डेफिनेटली बहुत जरूरी है बनवाना, अगर आपकी फैमिली में किसी का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज बनवाओ यार। एंड मुरादाबाद में एक रविवार और एक परिवार स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपको बता दें अपने जो महापौर विनोद अग्रवाल जी, उन्होंने शहरवासियों को 30 मिनट की सफाई की अपील की है कि आप हर रविवार और पूरा परिवार जो है इस स्वच्छता अभियान के जो है मुहिम में पार्टिसिपेट करें। एंड अगर आप 30 मिनट निकालेंगे और साफ सफाई की तरफ आप जुटेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो कैंपेन है वो हर रविवार सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलेगा, स्वच्छता जन अभियान। जन भागीदारी से स्वच्छता और सुंदर मुरादाबाद को साफ और स्वच्छ बनाने की जो पहल है वो शुरू की जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अल्टीमेट कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है। आई एम रियली अप्रिशिएट यार, अगर ऐसी तरीके से छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना मुरादाबाद अलग ही चमकेगा। बट इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा और आपका भी होगा, है ना, तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, बहुत जरूरी है। और इतना अच्छा कैंपेन शुरू किया गया है भाई साहब, तो इसमें डेफिनेटली इनरोल होना तो बनता है ना। एक रविवार हर परिवार स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी, तो अगर आप इसमें इनरोल हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले यार। अगर मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा डिफरेंट यू नो होते रहना चाहिए ना। अभी आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है, मैं आपसे पूछ रहा था कोई एक गाना बताओ जो चॉकलेट के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। इस गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास ढेर सारे लोगों ने करी है यार, तो मुझे लगा फिर तो
1: चॉकलेट लाइम जूस पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ गुड़िया खिला।
0: ये गाना डेफिनेटली अभी बजेगा यार, आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है। कोई चॉकलेट किसी को खिला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खिला रहे तो जरूर खिलाओ। अगर आपको लग रहा है कि किसी को खिलानी चाहिए और कोई मिल नहीं रहा है तो मुझे भी आप वो चॉकलेट खिला सकते हैं। I'm just kidding यार, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये बहुत ही प्यारी सुबह है, मंगलवार का दिन है, आप जहाँ भी निकल रहे हैं ऑल द बी बेस्ट। एक बहुत ही प्यारा सा गाना निकल गया है हंसी तो फंसी से, अल्टीमेट सॉन्ग यार, आई लव दिस ट्रैक, आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगा गाना। चलो इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन आप कहीं मजाइए, रेडियो के सोई बिल्कुल मत घुमाइए, नहीं बिल्कुल नहीं घुमाना है आपने, ठीक है। चलो एंजॉय करते हैं साथ में।

0: Mima.
1: Mamamaka. Nalaya ka beta.
2: Anji, good morning, good morning. Namaskaram. Kya hal chal?
3: Aap sun rahe hain Bindaas Morning. Bindaas Morning.
4: Bindaas Morning. Bindaas.
5: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
6: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
5: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
6: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
5: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
6: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
7: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
8: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
9: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिला
10: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास
11: लेडीज एंड जेंटलमैन आप आनंद के साथ हैं सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग आने वाला एक और बेहतरीन ट्रैक नीरज श्रीधर की आवाज तुलसी कुमार देंगी साथ दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रैक इस गाने में आपको डांस करना पड़ेगा मेरे साथ मैं बता रहा हूँ आप बैठे बैठे भी डांस कर सकते हो इतना अमेजिंग ट्रैक है यार मतलब दिस इज माइंड ब्लोइंग ट्रैक SR खान एंड साथ में दीपिका पादुकोण अंदर से डांस खुद ही बाहर आ जाता है यार हम जैसे जो यू नो डांस और म्यूजिक लवर वाले क्रेजी डाई हेड फैन उनका क्या लिरिक्स है यार चलो चलो मैं डांस करके आता हूँ आप लोग अपनी गाड़ी चलाओ

वाजी वाह, क्या गाना है। अगर आप भी लव मेरा हिट हिट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन, अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो भैया आप फुल ऑन मूड में हैं, टेंशन में नहीं। वाजी, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। ये वो कनेक्शन है, ये वो नेटवर्क है जहां पर आपकी और मेरी बातें ना बिना किसी नेटवर्क गायब के होती है, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के होती है। बातें वही जो आपका दिल चाहता है। गुड मॉर्निंग। आप आरजी आनंद को सुन रहे हैं, बस हम यहाँ से अच्छी वाइब्स और अच्छी स्माइल्स आपको देते रहते हैं और बढ़िया गाने जो सीधा आपके दिल को कनेक्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहाँ बातें वही वाली होती हैं जो आप मुझे मैसेज में लिख रहे हैं, मैं वही पढ़ने वाला हूँ। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है, जिसमें हम ढेर सारी बातें कर रहे थे आपसे। अच्छा, चॉकलेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पता किए हैं अभी। जस्ट मैं स्टडी कर रहा था कि भैया चॉकलेट पे क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं, चॉकलेट डे के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया जाए, तो उसमें पता लगा मुझे, पता है दुनिया में सबसे पहली चॉकलेट खाने की जो शुरुआत थी वो लगभग 4000 साल पहले शुरू हुई थी। एंड शुरुआत ही में चॉकलेट मीठी नहीं बल्कि कड़वे पेय ड्रिंक के रूप में पी जाती थी। इमेजिन, ये तो पता भी नहीं। अब सोचो आपकी चॉकलेट खाने की जगह पी रहे लोग, क्या उसका टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। और सफेद चॉकलेट यानी व्हाइट चॉकलेट असल में जो है अलग सी होती थी, व्हाइट चॉकलेट भी आती थी। ओह माय गॉड। एंड चॉकलेट खाने से बताया जाता है कि भैया दिमाग में जो है ना एक अलग ही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। अगली बार अगर मम्मी ने कुछ कहा तो मैं चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट का जो है भैया बताया जाता है कि मतलब एक दुनिया में ना एक बहुत बड़ी चॉकलेट है। एंड ये सबसे बड़ी चॉकलेट बार का जो इसका वजन है वो कई टन था, मतलब एक चॉकलेट थी इसका वेट बहुत ज्यादा था और जो एक छोटी कार से ही बहुत भारी थी। भाई कौन सी चॉकलेट है, इसको किसने बनाया होगा, मुझे पता नहीं, शायद हातिम भाई ने बनाया होगा। चॉकलेट खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं यार, चलो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, आपके मूड को बेहतर करने में काफी हेल्पफुल होती है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो तनाव है उसे भी कम करने में काफी मदद करती है चॉकलेट। और अगर आप सीमित मात्रा में जो है चॉकलेट खाते हैं तो ये आपकी दिल की सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है। चॉकलेट खाने के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी, अगर आप बहुत ज्यादा इसको खाते हैं तो आपकी तेजी से वजन बढ़ा सकता है, दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रात में चॉकलेट खा रहे हैं तो ज्यादा चीनी वाली चॉकलेट जो है आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकती है, एंड कुछ लोगों को इससे माइग्रेन या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है।

होती है। मजेदार फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखो भाई कुछ ना कुछ फैक्ट मैं लेकर आता हूँ रहता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर चॉकलेट को पिघलाकर फिर से जमा जाए तो उसकी चमक बदल जाती है, कभी ट्राई करना। बताया जाता है भैया चॉकलेट के बारे में जो है ना और भी बहुत सारे फैक्ट बताए जाते हैं। एक चॉकलेट चिप बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि कोको बीन्स को कई कारण जो है कई मतलब कई ऐसे चरणों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद एक चॉकलेट बनती है एंड दुनिया में हर साल करोड़ों चॉकलेट्स खाई जाती हैं। ओ माय गॉड, वैसे आज आप भी चॉकलेट खा सकते हैं और अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ओकेजन है। कोई आपसे नाराज हो गया तो चॉकलेट भिजवा दो यार उसके यहाँ पे, देखो खुश हो जाएगा बंदा या बंदी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आप आनंद को सुन रहे हैं। और अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आज के बचपन में ना जो आज के बच्चे हैं उनके बचपन में कौन कौन सी चीजें मिसिंग है जो आपके बचपन में मिसिंग नहीं थी। आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, आपने बहुत सारा फन किया होगा, आपने बहुत सारे बचपन में यू नो डीवीडीज कैसेट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें आपने देख रखी होंगी, है ना। आजकल के बच्चों को कहां वो सब चीजें पता है यार, तो मैं वही आपसे पूछ रहा था। एंड सो मेनी मैसेजेस, थैंक यू वेरी मच यार, सबने बहुत ही अल्टीमेट जवाब दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेजेस के लिए। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं, इतने प्यारे आपने मैसेज किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे मैसेज जो है हमें करते रहें, अपने प्यारे प्यारे मैसेज हम तक पहुंचाते रहें। हम एक सवाल लेकर जल्दी आप तक पहुंचते हैं आज की सुबह इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है 9837 896 896 पे। दिलर मेहंदी का एक बहुत ही प्यारा गाना, आने वाला गाना थोड़ा नॉस्टैल्जिया है, 90s वाली फील आपको देगा। चलो इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:45। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं आज वर्ल्ड चॉकलेट डे के मौके पे तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837 896 896 पर। विक्की सागर जुड़ गए हैं, लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हाल चाल है। रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से, इन्होंने बता दिया है आनंद जी चॉकलेट के ऊपर ये वाला गाना बहुत बढ़िया है, बाकी मुझे याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं मैं आपको याद दिलाऊंगा अभी। फिलहाल गाना सुनते हैं, हमारे साथ विजय ब्यूटी सेंटर से जुड़े हैं भरत नागपाल जी, थैंक यू भाजी बताने के लिए। कौन सा गाना चला सकते हैं, ट्यूजडे की सुबह है, आप आनंद को सुन रहे हैं। ऐसे मजेदार गाने और मजेदार बातों के लिए ट्यून इन कर लिया करो यार, मंडे टू सैटरडे आपके छोटे से रेडियो पे आता हूँ। चलो आई विल बी राइट बैक, ये गाना सुनो यार।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
3: आनंद को सुन रहे हैं आप, ये है बिंदास मॉर्निंग। फिलहाल वक्त हो गया है स्टेशन क्लॉक में 9:51। ये वो अल्टीमेट आवाज है जिसका आज जन्मदिन होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। यस आई एम टॉकिंग अबाउट कैलाश खैर, आज इनका बर्थडे है। मतलब अपने एक अलग ही अंदाज सूफियाना गायकी, और उन्होंने लाखों दिलों में एक खास जगह बनाई है। आज बर्थडे है कैलाश खेर साहब का, एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम की ओर से कैलाश खेर जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और खुशहाल रखे, और उनके सुरों को ऐसे ही खूबसूरत रखे, और वो हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहे। वेरी हैप्पी बर्थडे कैलाश खेर साहब। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कैलाश खेर के साथ, एंड साथ में क्रिकेट की दुनिया के खूबसूरत जाना माना नाम एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ यार, आज उनका बर्थडे है। यस, महेंद्र सिंह धोनी जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं, एंड साथ में कैलाश खेर जी का तो बर्थडे है ही, इसके अलावा एक और कमाल के आर्टिस्ट का बर्थडे, उनके बारे में बात करूंगा। बाकी कैलाश का आज का जो ये दिन है, आज की जो तारीख है, अगर इसमें आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लेजेंडरी के साथ। वंस अगेन अगर आप में से कोई अपना बर्थडे मना रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू।

क्या बात है यार, कैलाश खेर साहब का ही गाना, इतनी बढ़िया आवाज, इतना खूबसूरत अंदाज, कमाल के इंसान है यार। आज उनका बर्थडे होता है, हमारी तरफ से वंस अगेन हैप्पी बर्थडे कैलाश भाई को, शुभकामनाएं। एंड दोस्तों आपको बता दें, आज जन्मदिन है भारत के सबसे सफल और शांत स्वभाव वाले कप्तानों में से एक, महेंद्र सिंह धोनी जी का। क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही नाम जो है उन्होंने बना दिया है। यस, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर नेम। धोनी जी ने अपनी कप्तानी से भारत में कई ऐतिहासिक दिलों पर जो है अपनी जीत का असर छोड़ा है, एक छाप छोड़ी है। आज महेंद्र सिंह धोनी जी का भी बर्थडे है, मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी जी को, जन्मदिन की ढीरों ढीरों शुभकामनाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं अभी फिलहाल एक कड़क सवाल की। एक बहुत ही अच्छा गाना यहाँ पर प्ले करूंगा, ये आपको मेरे को बताना है कौन सी फिल्म का है। एंड ये जो है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही मूवी बनी थी, बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी, बहुत ही अल्टीमेट स्टार कास्ट थी, उसी का ये गाना है। कौन सी फिल्म का गाना है?

0: ये गाना कौन से फिल्म का है? आज महेंद्र सिंह धोनी जी का बर्थडे है एंड उन्हीं के जीवन पर बनी थी फिल्म जिसका ये ट्रैक है, वो कौन सी मूवी थी, उसका नाम आपको मुझे बताना है। आज 7 जुलाई की सुबह है।
1: जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गली।
0: वेरी वेरी पॉपुलर नंबर, वेरी वेरी ट्रेंडिंग ट्रैक एंड दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ट्रैक। बहुत प्यारी आवाज में गाया है पलक मुच्छल जी ने। कई बार आप हमारे रेडियो पे सुनते हैं तो बस आप मुझे इमीडिएटली बताओ कौन से फिल्म का ये गाना है। दिशा पाटनी इसमें नजर आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। MS जो है भाई साहब, मैं आपको बता दूं ना, आज की सुबह बहुत खास है। मैं आपको जेन्युइनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी मैंने आपको MS शॉर्ट में बताया ना, इसका क्या है पूरा एक बहुत ही खूबसूरत नाम जिससे जुड़ा आज का एक थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक मैंने बताया था ना, एक अल्टीमेट पर्सनालिटी का बुद्धि भी है जिसके बारे में बात करना तो बनता है, तो डेफिनेटली उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ अभी जो आप गाना सुन रहे हो वो कौन सी फिल्म का है एंड ये गाना जो है आपने कई बार रेडियो पर सुना होगा। फिर से सुना रहा हूँ।

सिंह धोनी का बर्थडे है, उनके जीवन पर बनी थी ये फिल्म, उसी का ये गाना है। व्हाट्सएप करके आपने मेरे को बताना है 9837896896 पे। इंतजार कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का। आपको कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाना है, ऐसे ही आरजे आनंद को सुनते जाना है। 9837896896 ये व्हाट्सएप का नंबर, इस नंबर पे आपको टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही वाला जवाब। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। वक्त हो गया है 9:00।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
6: लेकिन सोनिया
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
6: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

कितने लोगों ने आम का अचार बनाया, सच सच बताना। अगर किसी ने बना लिया तो भाई एक डब्बा मेरे को लिए भी भिजवा दो यार। मैं सच बता रहा हूँ, आम का अचार ना टेस्टी लगता है यार। मैं बता रहा हूँ, जब आप घर से बाहर रहते हो तो बड़ा मिस करते हो यार ये मम्मी के हाथ का अचार, मम्मी के हाथ के आम की वो चटनी एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी यू नो मिस करते हैं यार हम लोग। एनीवेज चलो इससे जोक से बाहर, अगर आपके घर पे अचार चचार बन गया तो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब आम के अचार की तो बात ही लजीज होता है यार। एनीवेज मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा। वैसे आज का दिन बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि भैया एक बहुत ही अल्टीमेट फिल्म है दादी की शादी, ये OTT पर जो है धांसू एंट्री देने वाली है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये कपिल शर्मा भी इसमें है। एक बहुत ही बढ़िया यू नो एक अच्छी मूवी है एंड यू नो ये 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी एंड इसके बाद अभी ये जो है OTT पर भी धांसू एंट्री दे रही है। तो ये OTT पर आने वाली है, बहुत ही अच्छी यू नो एक अच्छी मूवी है। यू नो दादी की शादी बहुत ही बढ़िया, इसका टाइटल आप देख रहे हो, नाम कितना अच्छा है दादी की शादी। तो ऑफकोर्स यार कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है, तरंगीसा होगा इसमें, गाने बहुत अच्छे हैं नो डाउट इसके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, ढेर सारे सेलिब्रिटीज का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैंने आपसे कहा था आप मुझे इमीडिएटली मैसेज करके बताओ कि भैया जो गाना चल रहा है वो कौन सी वाली एक्ट्रेस के ऊपर पिक्चराइजेशन है। एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ, इतने सारे मेरे पास मैसेज आए हैं, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने सही जवाब दिए वैसे ऑलमोस्ट, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल।

0: क्या बात है, यही आपको बताना था। एंड मेरे पास सबसे पहले राइट आंसर आया है यहाँ पर, इनका नाम है नूर हसन, नंबर की 4 डिजिट है 6440। कंग्रेचुलेशन जी, आपके नंबर की 4 डिजिट मैंने बताया है कि आप सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाइयां। एब्सोल्युटली आपने सही जवाब दिया है, एम एस धोनी, दिस इज राइट आंसर, स्टारिंग बाय सुशांत सिंह राजपूत एंड साथ में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी सी अदाकारा है। यस, दिशा पाटनी भी है और गाना बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, सब लोगों ने एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर्स किए हैं। आई एम सो हैप्पी, मेरे पास अभी कोई गिफ्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली दे रहा, लेकिन हाँ गिफ्ट की जगह बहुत सारी तालियां हैं, बहुत सारा प्यार है आज की सुबह जो आप जीत के जा रहे हो यार। आरजी आनंद की ओर से आपका नाम रेडियो पे आ रहा है, तमाम लोग आपका नाम सुन रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बताओ बताओ मुझे, है कुछ और अच्छी बात है इससे, और क्या चाहिए यार। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीबॉडी। आप लोग मुझे ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे, आपके लिए ढेर सारी गाने होते हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी सुबह को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। आगे बढ़ते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी अपने ऑफिस में निकल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आप सभी के लिए अच्छा गाना। आस्था गिल का ब्यूटीफुल ट्रैक, इसी को सुनते हुए मैं यहाँ से लूंगा आपसे इजाजत, आप लोग सुनते हुए आगे बढ़ेंगे अपने सफर को और एंजॉय करेंगे। तेरा बस मुझे, मैं भी चाहता हूँ। मुरादाबाद से जुड़े थे रणवीर सिंह, लिखते हैं उगते सूरज के साथ आपको हमारी तरफ से सुप्रभात। रणवीर जी ने मुझे बताया था, मैंने आपसे ये भी पूछा था, सलमान खान भाईजान के लिए बहुत ही अल्टीमेट डे है आज, 2016 में उनकी फिल्म आई थी अनुष्का शर्मा के साथ, बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी, फिटनेस को बहुत अच्छे से दिखाया गया, कबड्डी उसमें बहुत अच्छे से दिखाई गई, एंड दिस इज राइट आंसर सुल्तान। यस ऑफकोर्स, सुल्तान मूवी में अनुष्का एंड सलमान की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, एंड 2016 में फिल्म आई थी आज के दिन, बहुत ही अल्टीमेट मूवी। भैया कंग्रेचुलेशन, इन्होंने ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, रणवीर जी ने अगला भी सही जवाब दिया, थैंक यू, क्या बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा मेरे पास श्रुति का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, पहुंचाती है मुझे दिल्ली रोड से, साथ में शिखा जुड़ी है मानसरोवर से, जुल्फी भाई जुड़े थे राइट आंसर के साथ, एंड साथ में एमएस धोनी सही जवाब पहुंचाती है मुझे, लक्ष्मी जी सूर्यनगर से, माता मंदिर से भी मेरे पास सही जवाब पहुंच रहा है। एवरीबॉडी आप लोग सच में बहुत प्यारे मैसेज करते हो, यू आर अल्टीमेट पर्सनालिटी यार, आप सभी लोग बहुत ही प्यारे हैं, थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे मैसेज करने के लिए। साथ में राहुल एंड निधि भी जुड़े थे मेरे साथ सही जवाब के साथ, एक मैसेज और आ गया मेरे पास। गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है, आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर, बहुत मजा आ जाता है, सुबह बेहतरीन हो जाती है, एंड सलमान अनुष्का की फिल्म थी सुल्तान, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सबीना खान जुड़ी है रहमत नगर से, करूला मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। एम एस धोनी, दिस इज राइट आंसर। अलका वर्मा जी जुड़ चुकी है मेरे साथ आज की सुबह,
1: किसी से भी पूछ टू मच, थोड़ा
0: 10:10 हो रहे हैं फिलहाल, जाने का समय हो रहा है और ज्यादा बात नहीं करूंगा जी, इनका वॉइस
2: नोट। ये गाना महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर फिल्म
0: जी
2: बनी थी
0: जी, जी।
2: का नाम था एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया,
2: दिशा पाटनी थी
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: और सुशांत सिंह राजपूत
0: बिल्कुल
2: महेंद्र सिंह धोनी का रोल क्रिएट थे,
0: बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया था, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अलीशा, मुरादाबाद से बात कर रही हूँ, आनंद जी गुड मॉर्निंग, और सही जवाब भी आपने दिया अलीशा, थैंक यू वेरी मच। एंड ये बबली अंजान साथ में गीता कर्षप हमारे साथ जुड़े हैं सही जवाब के साथ, वेरी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। लेकिन आनंद जी अपने बचपन के बारे में कुछ बताया यार, फिर कभी बताऊंगा। हाय हाय, मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है। ये अहमद जी का मैसेज पहुंच रहा है मेरे पास, 3098 नंबर के 4 डिजिट है, पूरा नाम लिख देते यार। सब धुंधला धुंधला लागे। साथ में जुड़े हैं हमारे साथ भरत नागपाल जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमारे पास उस्मान टीलर जी, एंड इसके अलावा मेरे पास बबलू और दुर्गेश जी का भी मैसेज आ रहा है। रिहाना जी जुड़ी है मेरे साथ रानी नांगल से, जोन रोजी पलवली सहारनपुर से, लिखते हैं अगर ये कौन मैसेज कर रहे हैं हमारे पास आज की सुबह, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है बट इन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है। मित्रपाल साहब वेरी गुड मॉर्निंग, चमन लाल साहब जुड़े हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नेहा स्वाती जुड़ चुकी है मेरे साथ आज की सुबह अमरोहा से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। राजेश मीणा बेंगलुरु से जुड़े हैं आज की सुबह, एंड इसके अलावा मेरे पास मध्य प्रदेश से मैसेज आ रहा है, इंदौर से भी मैसेज आ रहा है प्रियंका जी का, ये मैसेज मुझे लखनऊ से पहुंच रहा है आज की सुबह, गुड मॉर्निंग आनंद हाउ यू, आई एम गुड, आई एम गुड। इन्होंने भी अपना नाम लिख दिया है शुभम, थैंक यू शुभम जी, बनारस से मैसेज पहुंच गया मेरे पास, गुड मॉर्निंग का। गाइस थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी. अब मैं निकलता हूँ, कल सुबह फिर आपको मिलता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, नई एनर्जी के साथ, नई वाइब के साथ. तब तक के लिए रखें अपना ढेर सारा ख्याल, अगली कंपनी एंजॉय कीजिए खुशी के साथ, दीजिए उसको ढेर सारा प्यार. सुनते रहिए ऐसे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. ये मैसेज अमरोहा से पहुंच रहा है. नेहा जी लिखती है, हेलो जी कैसे हाल चाल है मेरे प्रिय आनंद जी, गुड मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग, सुनते ही आनंद आ जाता है भाई जी आपके साथ, बहुत ही अच्छा शो करते हैं आप, थैंक यू नेहा. एक और मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, हेलो हेलो मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, गुड मॉर्निंग जी, हाय दिस इज मी, क्या लिखा रितेश, हाय गुड मॉर्निंग रितेश, थैंक यू सो मच यार ज्वाइन करने के लिए. चलिए गाइस बाय बाय, कल मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. कुछ कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, या फिर हमारी ऑफिशियल आईडी फॉलो कर सकते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहां पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा. सारी एक्टिविटीज क्या चल रहा है आसपास में सब कुछ आपको पता लगेगा हमारे इंस्टाग्राम पे, फॉलो कीजिए. डोंट फॉरगेट, अभी के लिए जाता हूँ यहाँ से, हैव अ फैबुलस मॉर्निंग, मौसम अच्छा हो रहा है, इस मौसम को जो है इंजॉय करते रहिए यार, ढेर सारा पानी पीते रहिए और अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए, ठीक है जी. और अभी के लिए मैं कहता हूँ आपको बाय बाय, साइनिंग ऑफ.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
0: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, मौसम तो जादू दिखा रहा है, कभी बादल हो जाते हैं तो कभी धूप हो जाती है, लेकिन जिसका इंतजार है वो ही नहीं आ रही है। किसका इंतजार कर रहे हैं हम? रेन का। जी हाँ, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। ये मौसम भी ना क्या करें, बहुत जादूगर हो गया है। लेकिन सबको उम्मीद, सबको आस है कि जल्दी से बारिश हो जाए। सभी को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। और दोस्तों, मैं वक्त बता देती हूँ आपको, समय हुआ है 10:22। शुरू हो चुका है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला, जहां पर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन, एंड क्या क्या एक्टिविटीज आज शो में होने वाली हैं सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अभी तो खुशी आई है, थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा। दोस्तों, आप मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और डियर लिसनर्स, आज की सुबह थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी चॉकलेटी होने वाली है क्योंकि आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे। इस पर भी हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब से और कहां से हुई है, सब कुछ आपको धीरे धीरे पता लगेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और आप भी सोच रहे ना कि बारिश आ जाए, मुझे भी बारिश में नहाना है। वैसे दोस्तों, बारिश में नहाने का ना एक अलग ही आनंद है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब झिमझिम बारिश आती है और उसमें हम जब नहाते हैं, भीनी भीनी खुशबू आती है चारों ओर से। चलो, अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन एक साथ जब खुशी बोलना शुरू करती है ना, तो चुप होने का नाम नहीं लेती है। अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप हो जाती हूँ, थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ और एक आपको बेहतरीन गाना सुनवाती हूँ। मीठा आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैं जानती हूँ। तो चलो, ये गाना भी सुन लेते हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
2: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
0: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। नेहा कक्कड़ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा से गाना, ख्याल रखिया कर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज हमेशा अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी हैप्पीनेस किसी और के चेहरे पर भी स्माइल लेकर आ सकती है। दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। जिंदगी में चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, अपनी उम्मीद और अपनी मुस्कान कभी मत खोइए, और हमेशा अपने अपनों का ख्याल रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए। और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करूंगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड चॉकलेट डे। जी हाँ, और चॉकलेट किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है एंड फेस्टिव सीजन जब आता है तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स आती हैं, और मेरे दोनों ब्रदर सबसे ज़्यादा चॉकलेट मेरे को गिफ्ट करते हैं। मैंने बोला इतनी चॉकलेट मत खिलाओ, मेरे दांत ख़राब हो जाएंगे। बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, खाओ। लेकिन मैं खाती हूँ, पर ज़्यादा नहीं। दोस्तों, हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और साल 1550 में इसी दिन पहली बार यूरोप में चॉकलेट पहुंची थी, तभी से ये दिन दुनिया भर के चॉकलेट लवर्स के लिए एक खास सेलिब्रेशन बन गया है। चॉकलेट जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कोई डार्क चॉकलेट पसंद करता है तो कोई मिल्क चॉकलेट, तो किसी की फेवरेट वाइट चॉकलेट होती है। और सच कहूँ, मुझे भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, अब इतनी स्वीट हमने बातें कर ली हैं, तो आज का स्वीट क्वेश्चन भी मेरा है आपसे। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाली हूँ, आप मुझे बताएं, अगर आज आपको अगर चॉकलेट गिफ्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आप सबसे पहले किन को चॉकलेट गिफ्ट करना चाहेंगे। जी हाँ, आज वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आपको आज चॉकलेट गिफ्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आप सबसे पहले किन को चॉकलेट गिफ्ट करेंगी। बहुत सिंपल सा है, बताइए बताइए फटाफट से। नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। अब इतना प्यारा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। चॉकलेट गिफ्ट करना तो बनता है ना। चलो, आप चॉकलेट बांटो, मैं इधर यहाँ पर संदेश पढ़ लेती हूँ जो यहाँ पर बहुत देर से आए हैं और सब इंतजार भी कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, दुर्गी सैनी जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। कहते हैं, जय श्री राम खुशी मैम, कैसे हैं आप। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आपको भी। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आई एम सो हैप्पी। आप सभी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो खुशी अपने आप खुश हो जाती है। दिल से दिल का रिश्ता है आपका और हमारा। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, और ये कहते हैं, चाय में चीनी नहीं हो तो पीने में क्या मजा है, चाय में चीनी नहीं हो तो पीने में क्या मजा है, और लाइफ में FM रेडियो ना हो तो जीने में क्या मजा है। अरे वाह, क्या बात है। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, क्या मौसम आया है। बताइए बताइए बाहर का मौसम कैसे है, अभी हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जब मैं आई थी तो सिर्फ बादल ही थे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मन पसंद आरजे खुशी जी को, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं, और ये अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं लदावली जिला मुरादाबाद से।
दोस्तों आप भी मुझे फटाफट से अपने संदेश पहुंचाएगा और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सारे आज हम फन एक्टिविटीज करने वाले हैं, ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने सुबह को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपनों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि हर दिन बहुत खूबसूरत है। एंड अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंटिन्यू प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिए, एंड जो चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में पाना वो सब आपको मिल जाएगी।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

हाँ जी दोस्तों, मनु सुना दो सारी बातें। देखो हम तो बात कर ही रहे हैं आपके नाल, बट आप भी मेरे नाल बातें कर सकते हो, गला कर सकती हो जी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि खुशी हिंदी पंजाबी कैसे मिक्स कर दी थी है। देखो जी, असी तो पंजाब से नहीं है, ना ही असी पंजाबी कुड़ी है, बट मैंने पंजाबी लैंग्वेज बोलनी बड़ी चंगी लगती है, तो माड़ी माड़ी पंजाबी बोल लेते हैं असी। Hi everyone, once again welcome back. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, और वक्त हुआ है 11:50। और बैक टू बैक आपके जो प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करूंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि आज जन्मदिन है अपनी अलग और रूहानी आवाज से करोड़ों दिलों को छू लेने वाले मशहूर गायक कैलाश खेर जी का। जी हाँ दोस्तों, 7 जुलाई 1973 को मेरठ में जन्मे कैलाश खेर जी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जीवन में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने छोटे मोटे काम किए और संघर्षों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तलाश जारी रखी, लेकिन उन्होंने कभी संगीत का साथ नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत और अलग अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत की एक खास पहचान दिलाई। उनके पॉपुलर ट्रैक हैं तेरी दीवानी, सैया, अल्लाह के बंदिया और यूं ही चला चल रही जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी आवाज़ में सूफियाना एहसास और भारतीय लोक संगीत की खुशबू साफ महसूस होती है। आज उनके जन्मदिन पर हम उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और संगीत से भरे शानदार सफर की कामना करते हैं। हैप्पी बर्थडे कैलाश खेर जी। और उन्हीं का ट्रैक मैंने एक यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा अपने श्रोताओं को भी, अपने लिसनर्स को भी हम ये ट्रैक सुनवाएंगे। लेकिन आपके यहाँ पर लगातार संदेश आ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कश्मीर से आया है महराजुद्दीन जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर भूपी शर्मा जी का, नगर पंचायत बागवाड़ा से। कहते हैं राधे राधे जी, सुप्रभात, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं, जब भी हमारे साथ सर कनेक्ट होते हैं, कोई ना कोई थॉट, कोई विचार अपना ज़रूर हम तक साझा करते हैं और हम अपने तमाम श्रोताओं तक वो पहुँचाते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह से खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं कि रिश्ते कभी हमारी सुंदरता, उम्र या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते। रिश्ते हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए समय और साथ सम्मान पर निर्भर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही है सर। तो मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आपके पास इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं तो आप उनको संभाल कर रखिए, उनके केयर कीजिए और उनको टाइम भी दीजिए, क्योंकि समय से अनमोल कोई तोहफा नहीं होता है। जो अपना कीमती टाइम दे देता है वो सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। और सर ट्रैक सुनना चाहते हैं, बरसात के दिन आए। ओहो हो, बारिश होने लगी है बाहर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। अलीशा का मैसेज हमारे पास मुरादाबाद से आया है एंड कह रही है आज मेरी सिस्टर की सगाई है, आप कोई भी ट्रैक प्ले कर दीजिएगा। ओके अलीशा, आपकी बहन को बहुत बहुत मुबारक है हमारी ओर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? आपके आते ही मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा जी, काली घटाएं छा गई हैं मैम। इन्होंने नाम लिखा है अपना, एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं।
शबीना हमें मैसेज पहुंचाती हैं। शबीना खान जी रहमत नगर मुरादाबाद से। बिल्कुल जिस ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना, ये ट्रैक हम आपको जरूर सुनवाएंगे। शुक्रिया आपने शबीना अपना मैसेज पहुंचाया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उत्तराखंड से, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। विक्की सागर जी का मैसेज भी हमारे पास आया है। आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बारिश होने लगी है ना बाहर रिमझिम। चलिए आप बारिश का लुत्फ उठाइए, मैं आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ आज कैलाश खेर जी का मेरा फेवरेट सॉन्ग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मुझे पूरी उम्मीद भी है कि मेरे श्रोताओं को भी ये ट्रैक पसंद आएगा। आज उनका जन्मदिन है तो ये गाना तो बनता है ना दोस्तों, तेरी दीवानी सुनिएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजे खुशी फिर से स्वागत करती है पूरे दिल से आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, वक्त हुआ है 11:09 और जरूरी तो हो जाता है क्या, लाइट होती है तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है अभी फ़िलहाल गर्मी में। लेकिन हाँ, मौसम बाहर का बहुत ही औसम हो गया है। सुबह सुबह बहुत गर्मी थी, फाइनली अभी थोड़ी राहत मिल चुकी है। दोस्तों, मैं आपको वक्त बता देती हूँ राइट नाउ। वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 11:10। दोस्तों, आज 7 जुलाई का दिन है और हम एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देते हैं। आज का दिन देता है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं प्रेम दिवस मनाया जाता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी ताकत की नहीं बल्कि पीस, लव और रिस्पेक्ट की होती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, शांति से बड़ा कोई बल नहीं, प्रेम से बड़ी कोई जीत नहीं। अगर हम अपने शब्दों में थोड़ी मिठास, अपने व्यवहार में थोड़ा सम्मान और अपने दिल में थोड़ा सा प्यार रख लें तो न जाने कितनों की जिंदगियाँ मुस्कुरा उठेंगी। तो दोस्तों, याद रखिए, नफरत बांटने से दिल दूर होते हैं लेकिन प्यार बांटने से रिश्ते मजबूत होते हैं। तो आज खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, किसी से बेवजह नाराज नहीं होंगे, जहाँ हो सके वहाँ मुस्कान बांटेंगे और हर इंसान के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएंगे। क्योंकि दोस्तों, नफरत की आग में कुछ भी हासिल नहीं होता, मोहब्बत से बढ़कर कोई साहिल नहीं होता। चलो आज ऐसे दीप जलाएं प्यार का, चलो आज ऐसा दीप जलाएं प्यार का जिसकी रोशनी से हर दिल में सुकून होता है। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत मैसेज आए हैं। मैंने आपसे पूछा था मॉर्निंग में, याद है आपको या भूल गए हो? चलो मैं याद दिला देती हूँ रिटर्न। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा था कि दोस्तों आप मुझे बताइए, आज अगर आपको चॉकलेट गिफ्ट करने का इतना खूबसूरत मौका मिल रहा है तो आप सबसे पहले किन को चॉकलेट गिफ्ट करेंगे? जी हाँ, कौन ऐसी पर्सन है जिनको आप सबसे पहले चॉकलेट गिफ्ट करना चाहेंगे? फटाफट से अपने जवाब हमें पहुँचाइए, इतना मत शर्माइए। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है, आपको विश्व चॉकलेट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, कैसी हैं आप? अभी आपने पूछा आज किसी को चॉकलेट देना चाहोगे, तो आज मैं भूपी शर्मा जी को सबसे पहले चॉकलेट देना चाहूंगी। अरे वाह, क्या बात है सपना जी, आपने तो कमाल कर दिया। और ये कहती हैं कि आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है, तो मैम इसी मौके पर एक प्यारा सा ट्रैक मुझे सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल, आपने तो ये बात कहकर ना मैम दिल खुश कर दिया है। और भूपी शर्मा जी देखिए कैसे खुशी से शर्मा रहे हैं, हौले हौले सी। दोस्तों, इतना प्यारा सा दिन है आज स्वीटनेस का, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वीट तो बांटना चाहिए, है ना? जितना रिश्तों में मिठास होगी उतने रिश्ते स्ट्रांग भी होंगे ना। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, ललिता जी का, एंड ये कहते हैं, खुशी मैम आज का मौसम लगता है आपका इंतजार कर रहा था, जैसे ही खुशी मैम एफएम पर रेडियो पर आई तभी हम बरसेंगे। ओके, ये बारिश के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। सावन आया बादल छाए, ओके ठीक है, ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद हम करेंगे आपसे गुफ्तगू, बातें करने वाले हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है सब आपको धीरे धीरे यहाँ पर पता लगेगी। बस आप यूं ही हमेशा ऑलवेज खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हाँ जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुना, सावन आए बादल छाए, लेकिन तुम कब आओगे। देखिए, आपने इतने प्यार से हमें बुलाया, इंतजार आप हमारा कर रहे थे, तो हम कैसे नहीं आते। मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 11:28, और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज तो आपके लगातार आ ही रहे हैं, मौसम भी बहुत ही सुहाना हो गया है, रिमझिम बारिश भी हो रही है। और श्रोताओं, अब एक जरूरी मौसम अपडेट भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते मौसम विभाग IMD ने दिल्ली NCR, UP, बिहार और झारखंड सहित 22 राज्यों में झमाझम बारिश, आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। झारखंड और उड़ीसा के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के प्रभाव से अगले 3 दिन तक मध्य भारत समेत कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखें, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और मौसम विभाग की सलाह का पालन जरूर करें। सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और बारिश का, इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी लीजिए। ये तो थी मौसम की अपडेट, अब हम आपके संदेशों को भी शामिल कर लेते हैं। मुझे मालूम है आप बहुत देर से सोच रहे हैं कि खुशी जी अब हमारा संदेश, हमारा मैसेज शामिल करेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी का, साथ में उस्मान खान जी भी हैं, और ये कहते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हमारे यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, आपके आने से रिमझिम बारिश होने लगी है, जैसे ही आप ऑन एयर आए और बारिश शुरू हो गई है, क्या बात है सर, रिमझिम बारिश का आनंद लीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और रिहाना जी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी।

अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मोहम्मद कामिल जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। जिला रामपुर की टांडा से अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं और इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं। कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम पुरानी छोड़ आए हैं, आते आते उसकी आंखों में पानी छोड़ आए हैं। ये ऐसा दर्द है जो बयां हो ही नहीं सकता। दिल तो साथ ले आए हैं लेकिन धड़कन छोड़ आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, सुबह सुबह शायराना अंदाज। अच्छा लगता है जब आप अपने कुछ थॉट, कोई शायरी, कोई बातें हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप भी मुझे लगातार अपने संदेश पहुंचाइएगा। मैं सुनवाती हूं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर बारिश वाला गाना ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है ना कुछ। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे और भी बातें।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी खुशी, और आज भारत के सबसे सफल और सबसे शांत कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें प्यार से कैप्टन कूल और माही के नाम से भी जाना जाता है। 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्मे धोनी सिंह जी ने एक साधारण परिवार से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। क्रिकेट से पहले वे भारतीय रेलवे में टीटी कलेक्टर टीटीई के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जी ने मेहनत, धैर्य और अपने सपनों पर विश्वास ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा बना दिया। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। वे दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ICC की 3 प्रमुख सफ़ेद गेंद वाली ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को भी कई बार IPL चैंपियन बनाया और अपनी शानदार विकेट पिंक हेलीकॉप्टर शॉट और शांत स्वभाव से करोड़ों दिलों पर राज किया। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जी को हमारी तरफ से, FM की पूरी टीम की ओर से और सुनने वाले तमाम श्रोताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सादगी, नेतृत्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से आने वाली पीढ़ी को यूं ही प्रेरित करते रहें। हैप्पी बर्थडे चैंपियन कूल। दोस्तों, कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए भरोसे, धैर्य और जीत का दूसरा नाम है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ क्योंकि टेक्स्ट मैसेज लगातार मेरे पास बैक टू बैक आ रहे हैं। मैं सभी को शामिल करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अपने श्रोताओं के मैसेज को बिल्कुल भी मैं स्किप करूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है RK शर्मा जी का। इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे जुदाना होना। बहुत ही प्यारा गाना है, बिल्कुल सुनवाएंगे सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया संजू का। हाय खुशी दी, कैसी हैं आप? आपने जो स्टोरी लगाई है

0: इंस्टाग्राम पर, आप उसमें बहुत सुंदर लग रही हो. थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. ये किन क्या मैसेज आया है ज़रा देख लेते हैं. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छी होंगी. बिल्कुल जी, जैसा आपने सोचा हम वैसे ही हैं, फिट एंड फाइन. ये मैसेज हमें पहुँचाया है कुंदनपुर से. आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है. एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का. साथ में शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका शो मॉर्निंग मसाला सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. मौसम भी आज अच्छा हो रहा है, बादल छाए हुए हैं. किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा. थैंक यू. आज टेक्स्ट मैसेज आपने भेज दिया, मैं तो सरप्राइज ही हो गई हूँ क्योंकि आपका एवरी डे सो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है. बट कोई बात नहीं, कभी कभी टेक्स्ट मैसेज भी भेजना चाहिए. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास अमरोहा से आया है नेहा जी का और ये कहती है नमस्ते खुशी मैम, कैसे हैं आप? बारिश हो रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम. एक सॉन्ग हमें सुनवा दीजिएगा, कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं. ओ हो हो, मुझे पता है आप एफ एम मुरादाबाद से बहुत प्यार करते हो. आपकी मोहब्बत आपके मैसेजों में झलक जाती है. और भी हमारे पास मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है. तो एड ब्रेक के बाद म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी आएगी एंड जो भी मैसेज यहाँ पर हैं उनको भी हम शामिल करेंगे एंड कुछ और अपडेट्स हैं जो आप तक मुझे पहुँचानी है. तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है तो चॉकलेट खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को भी गिफ्ट कीजिए, खुद का भी मुंह मीठा कीजिए और सामने वाले का भी करवाइए क्योंकि इतना अच्छा दिन है. तो मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट तो बनती है, बच्चे ही नहीं बड़े भी खाते हैं, तो आप भी खाइए चॉकलेट. कभी आप सोचें कि चॉकलेट हम नहीं खाएंगे, बच्चे ही खाएंगे, तो बच्चे तो खाते ही हैं, अब आप बड़े भी खा लीजिएगा, अच्छी रहती है चॉकलेट.
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा. चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं.
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री.
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद.
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास. यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज. मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे. डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548.

क्या बात है दोस्तों, अभी आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक सुना कैलाश खेर जी की आवाज में एंड फ्रॉम द मूवी चांदनी चौक टू चाइना से अक्षय कुमार जी पर फिल्माया गया प्यारा सा ट्रैक। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा और आपको पता भी है कि आज कैलाश खेर जी का जन्मदिन भी है। और दोस्तों हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया है, हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन एक मैसेज बहुत ही खूबसूरत है और ये मैसेज हमारे पास आया है महेंद्र सिंह कुमार जी का। महेंद्र सिंह कुमार अरोरा निवास चंद्रनगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से एंड ये कहते हैं एफएम मुरादाबाद के श्री आरजे आनंद एंड आरजे खुशी जी को नमस्कार। आज मेरा जन्मदिन 7 जुलाई 2025 को 61वां जन्मदिन है और मेरे साथ साथ माननीय श्री महेंद्र सिंह धोनी एंड इंडियन क्रिकेटर एवं श्री कैलाश खेर जी हिंदी फिल्मों के गायक का भी आज जन्मदिन है। आप दोनों को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। इसी के साथ साथ मैं ये बता रहे हैं हमें दिनांक 31 जुलाई 2025 को प्रधान सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय मेरठ से सेवा नेतृत्व हुआ था, जिसको भी एक साल हो गया है। ओके क्या बात है, इन्होंने कहा है कि फेयरवेल पार्टी में मुझे एक ब्लूटूथ रेडियो पटना बिहार में रह इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। अच्छा, पटना बिहार में रह रहे मेरी बेटी की दोस्त द्वारा गिफ्ट दिया गया था। ओके वाओ, तभी से लगातार उक्त रेडियो पर प्रतिदिन प्रातः 7 से दोपहर 12 तक धार्मिक गाने, पुराने गाने, मिले जुले गाने, समाचार एवं कुंज एक वर्ष हो गया है। इनका भी प्रथम जन्मदिन है। मैं अपने रेडियो का फोटो क्लिक कर आपको भेजता हूँ। अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल सर, हम ये ट्रैक आपको सुनवाएंगे। आपने इतना प्यारा हमें मैसेज पहुँचाया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का। खुशी मैम, आप सबसे मालूम कर रही हैं कि आप चॉकलेट सबसे पहले किन को गिफ्ट करेंगे, तो आप मुझे बताइए आप सबसे पहले चॉकलेट किसको खिलाओगे, हम आपसे मालूम करना चाहते हैं। हाय रबा, ये बात है। देखो, मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं चॉकलेट खिलाऊंगी आरजे आनंद जी को, लेकिन उल्टा हो गया। आरजे आनंद जी ने सबसे पहले मुझे चॉकलेट खिला दी है। और बाकी यहाँ पर एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं पूजा जी विकास नगर से और कहती हैं खुशी मैम, आज का शो बहुत ही अच्छा था आपका, बहुत सारी अपडेट्स हमें मिली एंड उसके साथ साथ आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज का बर्थडे भी था एंड उसके अलावा आपने जो गाने यहाँ पर सुनवाए बहुत ही प्यारे थे। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आए। बस

0: आपका प्यार यूं ही बरसता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आप हमें प्यार करते हैं ना, बस हमारे लिए काफी है। अभी फिलहाल मुझे दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको 3 से 5 सप्ताह के लिए। रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनों के साथ रहिए एंड अपने अपनों का और अपना भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बदलते मौसम में बहुत ज़रूरी है अपना खास कर ख्याल रखना। जब भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ रेनकोट अपने साथ में लेकर जाएँ और छाता भी साथ रखें। एंड हाँ, जो बहुत ज़रूरी है, पानी की बॉटल, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, उसको भी साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बीच बीच में पानी पीना बहुत आवश्यक है। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए बाय बाय।
1: आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे सिहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
1: अरे आरजे खुशी, आज बड़ा अच्छा दिन है, गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी की एक 12 साल की बेटी थी गुड़िया, पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया, उन्होंने कहा अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप में पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगा। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ देखने को लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते कि ये सब शहरों की बातें हैं लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुल के विस्तार में बताइएगा।
1: देखिए HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है, ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
1: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो खुशी जी?
0: क्या सिहतिया जी, अब आप तो थोड़ा डरा ही रहे हैं।
1: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है, तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
1: यही तो अच्छी खबर है आरजे खुशी जी, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी इसे अच्छे से समझ सकें।
1: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
1: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बार की तरह काम करता है, ये वायरस को अंदर आके नुकसान करने से रोकता है।
0: ओह, मतलब कि ये बीमारी को शुरू करने से पहले ही रोक देता है।
1: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किस लिए लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है क्या?
1: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: और अगर कोई इसे बड़ी उम्र की हो
1: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में ये टीका भी लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
0: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हुआ तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: यही तो सबसे अहम बात है आरजे खुशी, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: जरा विस्तार से बताइएगा।
1: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को सही समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
0: सही कहा आपने।
1: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वही हारेंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गाँव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
1: देखिए आरजे खुशी, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें।
0: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
0: और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
1: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत?
1: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही ये पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे खुशी, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
1: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचती वहाँ ऐसी कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पूर्वा, यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाती है, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आ गया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा लिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झंकोर दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत ध्यान देना, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती भी, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
0: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
1: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाएं।
0: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
1: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ,
1: बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ।
0: तो चलिए जाने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही।
0: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कही और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
6: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे प्रवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
6: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
6: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
6: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं।
6: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसी करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?

0: ना बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
1: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
0: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
0: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है, और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या होगा, सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर, इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
1: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
0: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
0: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
1: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
0: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
0: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
1: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
0: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में

0: खा सके।
1: अच्छा सिहतिया जी, ऐसा क्या है?
0: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
1: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
0: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
0: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई, उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गयी। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल सिहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
0: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
0: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
1: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट सी सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो

0: पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल की धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: है। फैमिली ज्यादा आती
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: मुख्यमंत्री
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और उस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात ODOK की, तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ चारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं, तो इतने भक्ति सब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से निशानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आंच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं। जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है। और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूँ लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूँ, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद
2: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तो बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
3: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
2: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो दोस्तों मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
3: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
2: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
3: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
2: एब्सोल्युटली, स्पेशली डिजिटल टाइम में ना।
3: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटली
2: डिजिटल
3: की तरफ पड़ा है।
2: करेक्ट। तो श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000

0: और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं। तो जैसे देखकर जो हम होते हैं, हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लॉट प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
1: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है डिजिटली करना है, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
0: बिल्कुल ठीक
1: है
0: कहा आपने।
1: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए। भाई अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
1: तो इसी पर देखिए हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला, मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है श्रोताओं? निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं, पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रूपए लगा देता हूँ, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी, कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से किसी भी कारण किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रख।

0: करना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है। ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा, सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म, बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
1: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों प्राची?
2: हाँ बिल्कुल।
1: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कहीं हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
2: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
1: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: ये पर्दा

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत, प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहे। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर ले कि वो जो कंपनी है वो सीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। मतलब भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCHUP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
3: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
2: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
3: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
2: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
3: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहां जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10

0: सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं। और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया, जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है। उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं, जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है, तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है, तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है। और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं, तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
1: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है, तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
0: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान मां को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को। इससे माताओं को भी डिप्थीरिया, जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है, तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
1: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
0: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं, तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है, उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है, जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं, और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है, वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक NM होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे NM होती हैं, और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं, जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं, जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं, और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं, जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है, जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियाँ हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है। और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है। और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं। और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं, अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एनम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।

0: सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया के भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं इस गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।

0: आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति AY कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट

0: इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई

0: तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे
1: हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, और मेरे साथ आरजे खुशी है। श्रोताओं, हम आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जहां हम बात करने वाले हैं महिला मंच शो में, यानी कि PMJAY के बारे में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है। यानी अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च ना करने पड़े। इलाज सरकारी और योजनाओं से जुड़ी निजी अस्पतालों में कराया जा सकता है। तो चलो मेरे साथ हर बार की तरह कंपनी देने के लिए, यानी कि मैं और खुशी लेकर आते हैं आप सभी के लिए शो। तो मैं खुशी से ये जान लेती हूँ कि इस योजना के क्या क्या लाभ होते हैं।
4: तो अभी हम करने वाले हैं अपने प्यारे श्रोताओं का यहाँ पर स्वागत। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे बड़ा लाभ यही है कि परिवार को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अगर किसी को कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायलिसिस, बड़ी सर्जरी या अन्य गंभीर बीमारी हो जाए तो इसका इलाज इस योजना के तहत कराया जा सकता है। ये सुविधा कैशलेस है, यानी अस्पताल में भर्ती होने पर आपको इलाज के लिए पैसे जमा नहीं करने पड़ते। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, डॉक्टर की फीस, जाँच, दवाइयाँ, ऑपरेशन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद की कुछ जरूरी दवाइयों का खर्च भी शामिल होता है। इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। परिवार के सभी पात्र सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी हर साल 5 लाख तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो।
3: अब हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए।
5: सभी को नमस्कार। आयुष्मान कार्ड की पात्रता जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए। beneficiary.nha.gov.in पर क्लिक करेंगे और बेनिफिशियरी से ही ओटीपी के माध्यम से जब हमारा पेज खुलकर आ जाएगा तो उस पेज पे लिखा होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रथम चरण में आपको देखने को मिलेगा जो ब्लॉक होगा उसमें लिखा होगा स्कीम, तो PMJAY स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जिस स्टेट से संबंधित है आप, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर सब स्कीम आती है, सब स्कीम में आशा, आंगनवाड़ी, BOCW जो मजदूरी कार्ड से रिलेटिव होती है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी की, कुंभ मेला वर्कर और PM जनमन PVTG जो आदिवासी क्षेत्र होता है, और PMJAY और साथ ही साथ PMJAY अंत्योदय राशन कार्ड की स्कीम होती है। आप सर्वप्रथम PMJAY स्कीम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के हैं तो मुरादाबाद सेलेक्ट करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तत्पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो सर्च बाय लिखा होगा फैमिली आईडी, आधार नंबर, PMJAY ID। तो हम फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अपनी फैमिली आईडी डाल सकते हैं अगर हमारे पास है। अन्यथा की स्थिति में आप आधार नंबर डालेंगे और डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद सर्च पे जाएंगे। अगर आपका नाम आता है तो आप KYC के उपरांत अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
5: कार्ड बन जाने के उपरांत, आयुष्मान कार्ड का उपरांत बीमारी के अंदर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भर्ती होने पर ही लागू होता है। आप जाएंगे अस्पताल में, कंडीशन है आपकी और भर्ती हो रहे हैं तो आयुष्मान कार्ड आपका नियम अनुसार सूचीबद्ध चिकित्सालयों में लगा दिया जाए।
3: अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप कहाँ कहाँ इसका इलाज करवा सकते हैं और ये इसका क्या लाभ मिलता है?
5: जैसा कि आप जानते हैं, गंभीर बीमारियां कहीं ना कहीं हमारा शोषण कर रही हैं। उन बीमारियों के लिए जो हमारा जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी है और साथ ही साथ उनको कोई बीमारी हो गई है या अस्पताल में जा रहे हैं, 5 लाख तक का मुफ्त निःशुल्क नियमानुसार इलाज का लाभ का प्रावधान है जो सूचीबद्ध चिकित्सालयों में नियमानुसार दिया जाता है।
3: अगर माता पिता का आयुष्मान कार्ड है तो बच्चों को किस प्रकार से उनके लाइफ में काम आ सकता
5: है? बहुत अच्छी बात आपने सवाल पूछा है। बच्चों का किस प्रकार लाभ मिल सकता है माता पिता के बने हुए आयुष्मान कार्ड से? माता पिता के बने हुए आयुष्मान कार्ड से अगर बच्चों को कोई दिक्कत है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज उन्हीं के बने हुए माता पिता के आयुष्मान कार्ड से हो जाता है।
3: सर, एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहेंगे?
5: संदेश, आप अपनी सभी पात्रता जाने, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जन सेवा केंद्र, पंचायत सहायक, कोटेदार, आशा, आंगनवाड़ी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। हर जगह आयुष्मान मित्र हैं जो कार्य कर रहे हैं, कार्ड अभियान चल रहा है, सभी बहुत तेजी के साथ कार्ड को बना रहे हैं। ये पूरे भारत की योजना है, इसमें आप सभी भागीदार बने, लाभ दें, साथ ही साथ स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।
3: थैंक यू सो मच सर। और इसके लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
4: इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC के अनुसार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवार इसमें शामिल है। अंत्योदय अन्न योजना AAI और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग भी इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में रेड़ी पटरी लगाने वाले मोची, आदिवासी, निराश्रित और अन्य पात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको यह योजना जाननी है कि आपका नाम इस योजना में है या नहीं, तो आप अपना मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर डालकर अपनी पात्रता की जांच करा सकते हैं। रीना, आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?
6: अरे बहुत आसान है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पहले अपनी पात्रता जांचें। यदि आप पात्र हैं तो EKYC पूरी करके घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी अस्पताल या आयुष्मान मित्र के पास जाए। वहां आपकी पहचान फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी और आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र है तो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाइए। यह कार्ड बीमारी के समय आपके इलाज का बड़ा सहारा बन सकता है और आपको आर्थिक परेशानी से भी बचा सकता है। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों वेलकम बैक है आप सभी का एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है महिला मंच, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं पीएम जेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। और दोस्तों प्रति परिवार हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, भर्ती होने से पहले और बाद के कुछ चिकित्सा खर्च भी शामिल है। कई गंभीर बीमारियों और सर्जरी का उपचार देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में पोर्टल बिल सुविधा यानी पात्र लाभार्थी दूसरे राज्य में भी इलाज करा सकते हैं। दोस्तों इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को मिलता है। पात्रता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तय की जाती है। अगर किसी श्रोता को ये जानना हो कि उनका नाम सूची में है या नहीं, तो वह आर्थिक आयुष्मान भारत पोर्टल या नजदीकी कमिंग सर्विस सेंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना दे, केवल अधिकृत केंद्रों और आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं जानते हैं और किसी के आप बातों में आ जाते हैं और उनको वो बोलते हैं आपसे कि हमें पैसे दो, हम आपका फ्री इलाज करवा देंगे। लेकिन जब आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है तो आपको किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ किसी को भी पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना भी बोले, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। श्रोताओं अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप सभी को पेश है हमारी तरफ से।
0: दोस्तों इलाज जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बीमारी से बचाव, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच हमें स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। दोस्तों ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने हाउसफुल 5 से ये ट्रैक सुना, लाल परी। बहुत सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका बड़ा फेवरेट होता है। एक्चुअली अक्सर मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है इस ट्रैक की, तो मैंने कहा चलिए इस शो को आगे बढ़ाने से पहले ये गाना सुन लेते हैं, उसके बाद अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे। दोस्तों लाइफ में ना कभी भी खुद को कम मत समझिए। जी हाँ, लाइफ में कभी भी खुद को कम मत समझिए। हर इंसान के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, बस ज़रूरत होती है खुद पर भरोसा रखने की। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाती है। तो आप भी लाइफ में अगर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो आपने डिसाइड किए हैं कि मुझे कम्प्लीट करने हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तभी आप हर चीज़ को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस शो में, इस कार्यक्रम में कॉल लगाना, अपने पसंद का कोई भी ट्रैक सुनना, तो उसके लिए भी आपको कोशिश तो करनी होगी ना साथियों। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है और मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी खुशी, आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। तो अभी सिलसिला शुरू करते हैं, बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते गुरु जी।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मेरा नाम बलवीर सिंह है।
0: बलवीर सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं राजस्थान हिंडौन सिटी से बात कर रहा हूँ।
0: राजस्थान से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: जी मैं अच्छा हूँ, और आपसे मेरी सेकंड टाइम बात हो रही है। अब
0: सेकंड टाइम बात हो रही है जी, आप क्या करते हैं सर?
1: जी मैं टीचर हूँ मैम।
0: ओके, टीचर हैं। हाँ, सेकंड टाइम बात हो रही है, आई रिमेम्बर, अभी मुझे याद आया। तो बताइएगा आपके वहाँ का मौसम कैसा है राजस्थान का?
1: अभी तो मौसम बदल वगैरह आया और ठंडा मौसम है, ज्यादा वो नहीं है अभी।
0: अच्छा, गर्मी से राहत है, बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं हुई ना अभी?
1: हाँ बारिश हुई थी कल रात को, हुई थी बूंदाबांदी।
0: अच्छा अच्छा, ओके, जो प्रॉपर बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है।
1: हाँ वो बारिश नहीं हो रही है, जमाझम होनी चाहिए वो।
0: हाँ

0: दोस्तों अभी आपने एक खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी 420 से अक्षय कुमार जी बहुत ही खूबसूरत से नजर आए, साथ में महिमा चौधरी जी, सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज में ये प्यारा ट्रैक अभी आपने सुना। लिरिक्स थे समीर जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे संजीव दर्शन जी। और कहते हैं ना दोस्तों कि बीवी की तारीफ करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि तारीफ का रिटर्न गिफ्ट अक्सर मुस्कान, प्यार और कभी कभी गर्मा गर्म चाय के रूप में भी मिल जाता है। तो अक्सर आप तारीफ किया करो मैम की, सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए वो इतनी मेहनत करती हैं। जब आप सोकर भी नहीं उठते हैं तब तक वो नाश्ता आपके लिए रेडी करके रख देती हैं, हर एक चीज का वो ख्याल रखती हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश, सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: हाँ जी आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से, आपका नेम सोता मोहम्मद इसरत

0: रहा हूँ मैम।
1: जी बताइएगा, कैसे इर्शद जी आप?
0: मैम बहुत अच्छे हैं, मौसम भी काफी सुहाना हो रहा है हमारी तरफ। मैम बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। मैम कुछ जगह बारिश नहीं हुई है, कुछ जगह हुई है।
1: हाँ हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा है, कहीं कहीं बारिश बहुत तेज हुई है, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है।
0: मैम आपके मुरादाबाद में हुई होगी शायद, वैसे मुरादाबाद में रामपुर में तो एक साथ में होती है।
1: हमारे यहाँ पर हाँ बारिश हुई है लेकिन इतनी तेज नहीं हुई है, बट ये
0: मैम
1: है
0: तेज
1: कि
0: नहीं हुई है, 1 घंटा मतलब ऐसी बूंदाबांदी हुई है ना, मौसम सही हो
1: हाँ
0: गया ये
1: जी
0: है।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बताइए इशरत जी, आप कौन सा गाना सुनेंगे आज?
0: मैम मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है एक दूजे के लिए।
1: हाँ जी
0: मैम से बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। मैम आज शेर और माइस में यारा सॉन्ग प्ले कर देना कुछ सुनने वाले।
1: जी जी बिल्कुल बताइएगा।
0: मैम सबसे पहले ये है ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, सुहार से है अमान मतलब रामपुर से, और सुहार से है विजय राठौर, साथ में आप भरम।
1: ठीक है सर, सुनवाते हैं सभी के साथ ही प्यारा ट्रैक। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ईश्वर जी की प्यारी सी रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक। आप भी मुझे कॉल कीजिएगा बिना किसी देरी के, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837898 6 और सुनिएगा ये शानदार सा गाना।

0: एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 3:27 हो चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप बताइए शबनम जी।
1: आप बताइए आप कैसी हो।
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइए क्या कर रहे हैं इस वक्त आप।
1: बस कुछ नहीं, आप बात कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। वो कहते नहीं है दीदी, कहते हैं तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है, तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है, तुम दूर जाओ तो बेचैनी मुझे होती है, महसूस करके देखना खुशी दीदी मोहब्बत ऐसी होती है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब अपनी लाइनें बोली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबनम जी। बताइएगा कहाँ से बात कर रही हैं आप, हमारे तमाम श्रोता सुन रहे हैं इस वक्त।
1: दीदी हम बताना चाहेंगे अपना परिचय, कहते हैं तेरी दोस्ती यही है मेरा प्यार, तेरी मेरी दोस्ती यही है मेरा प्यार, रहने वाली हूँ खंडिया की, शबनम अब्बासी है मेरा नाम।
0: अरे वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका।
1: जी दीदी आप बताइए आप कैसी हो, सभी स्टाफ के लोग कैसे हैं।
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और हम भी अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं, आप सभी के पसंदीदा गीतों को हम सुनवा रहे हैं। तो आप बताइएगा आज क्या फरमाइश है शबनम जी की।
1: दीदी फरमाइश से पहले कहना चाहती हूँ, दीदी उधर बारिश हो रही है।
0: नहीं हमारी साइड बारिश नहीं हो रही है
1: दीदी, हमारे तरफ तो बारिश हो रही है।
0: अच्छा ओके, कब से बारिश स्टार्ट हुई है आपके यहाँ पर।
1: दीदी मतलब रात से चालू हो गई बारिश।
0: अच्छा तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुकी भी है।
1: अब तो मतलब हल्की हल्की मतलब बारिश बूंदा पड़ रही है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा तो हमारे यहाँ पर भी हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है कभी बंद हो जाती है।
1: कहते नहीं है दीदी, एक चेहरा मेरी आंखों में आबाद हो गया, एक चेहरा मेरी आंखों में आबाद हो गया, उसे इतना पड़ा कि खुशी दीदी का चेहरा याद हो गया।
0: अरे वाह क्या बात है, देखा है आपने हमारा चेहरा। ओके हाँ, फिर तो आपकी निगाहों में।
1: जी जी जी दीदी, फिल्म का नाम है सूरज, जो गाने के बोले आगे प्यार पीछे प्यार, प्यार का सेट दे दे सिग्नल यार, वो दीदी दो नाम है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: सबसे पहले तो दीदी आप हो, आपकी को ये गाना डेडिकेट रहेगा और समय शमा परवीन और सारू नूर अंसारी।
0: ठीक है सुनवाते हैं प्यारा ट्रैक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, लौट कर आते हैं उसके बाद करेंगे आपसे भी बातें और ये चांस आपके पास भी है, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी मुझे अपडेट मिली कि कहीं कहीं शहरों में बारिश होने लगी है, झमाझम बारिश हो रही है। तो इस बारिश के मौसम में जब हम आराम से बैठे होते हैं ना, तो दिल करता है कि गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए और साथ में रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने चल जाए। फिर तो हर मौसम बहुत सुहाना लगता है, स्पेशली बारिश का मौसम बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अभी अगर आपके शहर में बारिश हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके हाथों में जो अभी जी हाँ एक कप चाय है, उसके साथ में मैं कहना चाहूंगी कि आप मुझे कॉल लगाइए और अपना इस सुहाने से मौसम में अपना फेवरेट गाना सुनते जाइए ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कंचन है।
0: कंचन जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं राजस्थान अलवर जिला लक्ष्मणगढ़ तहसील से।
0: जी बताइएगा, कैसी हैं आप? खमा घनी राम राम सा।
1: आपको भी? हम ठीक है।
0: ओके, बताइएगा क्या करती है मैम आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैं कुछ नहीं, एक हाउसवाइफ हूँ।
0: एक हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है। कैसे, कितनी जल्दी, कितनी इजीली हमारी जो वुमेन है वो बोल देती है नहीं हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें मैनेज करती
1: हैं। करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं करते।
0: पर ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ।
1: ऐसे ही
0: सब बोलना ऐसे चाहिए ना कि हम घर की सारी रिस्पांसिबिलिटी निभाते हैं, इतने सारे काम करते हैं,
1: बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, सास का, ससुर का,
0: सभी का ख्याल रखते हैं,
1: पानी ननद सबका, खाने का, पीने का, कपड़े का, सबका ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कहीं ना कहीं
1: ऐसे बोलते ही करते क्या, कुछ नहीं।
0: इतना इजीली बोल देते हैं, वही मैं कह रही हूँ कि अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहिए।
1: और सुबह जल्दी खड़े होते हैं, शाम को लेट सोते हैं।
0: हाँ, कितने बजे उठती हैं आप मॉर्निंग में मैम? सुबह कितने बजे उठती हैं आप? हाँ,
1: अब तो मैं ना, हमारे सर ड्यूटी है तो मैं ड्यूटी पे चल जाती हूँ, तो फिर तो मैं सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं 7 बजे बच्चे, तो 5:30 बजे खड़ी जाती हूँ।
0: ओके, हाँ जल्दी मॉर्निंग में आप 5:30 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि बच्चों को 7 बजे तक रेडी करके भेजना होता है, उनका लंच पैक करना होता है।
1: ससुराल आती हूँ तो जल्दी खड़ी होती
0: हूँ। ओके, तो अभी आप मम्मी के यहाँ पर है? ओके,
1: ससुराल मेरा हिंडौन सिटी है।
0: हाँ,
1: गाँव मेरा अलवर जिला लक्ष्मणगढ़ तहसील में।
0: ओके मैम, तो बताइएगा आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है फिर मुरादाबाद में, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मुझे अपने हस्बैंड के लिए गाना सुनना है।
0: जी बताइएगा, कौन सा गाना सुनना चाह रही हैं आप अपने हम सफर के लिए?
1: फूल तुम्हें भेजा एक तुम्हें।
0: ओहो, फूल नहीं मेरा दिल है।

0: ज्यादा करने तो अच्छा से नहीं लगता, गर्म बड़े हैं तो अच्छा से नहीं लगता।
1: ओके, तो आप घर में सबसे बड़ी बहू हैं क्या?
0: नहीं, वैसे यहाँ पे मेरी जिठानी है बड़ी, मैं छोटी हूँ।
1: अच्छा, आप छोटी हैं। ओके, तो चलिए मैम, और फैमिली में आपके कितने बच्चे हैं?
0: मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, मेरी जिठानी के 6 बच्चे हैं।
1: ओके, तो स्टडी करते हैं, अब स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? आपने बताया
0: मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। जिठानी के जिनकी एक की तो दोनों की जॉब लग गई, एक लड़की है जो अभी सेकंड ग्रेड की टीचर हुई है।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: हाँ, दूसरा जो हाई कोर्ट में बाबू है, टाइपिंग करता है।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है मैम।
0: सब मतलब शिक्षित फैमिली है
1: जी। चलिए, अच्छी बात है मैम, और आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा कंचन मैम। आप हमें हमेशा ऐसे ही कॉल कीजिएगा, हम सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा ट्रैक।
0: ठीक है,
1: तो चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं मैम की पसंद का प्यारा सा गाना। और राजस्थानी कल्चर भी बहुत ही अच्छा है। मैं जब राजस्थान गई थी घूमने के लिए, तो काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लोर किया, और वहाँ का खान पीन, वहाँ की यू नो वो लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीटली नेचर है सभी का, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। राजस्थानी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। जितनी बात करें राजस्थान के बारे में कम है। अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ ना तो शो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बातें कंप्लीट नहीं होंगी। तो अभी अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, एंड ये गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद मैं फिर से लौट कर आऊँगी।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, बहुत ही प्यारा सा गाना। और साथ में मुकेश जी दे रहे थे साथ।

0: दोस्तों, फूलों की खुशबू में छुपा होता था एक प्यारा सा पैगाम, हर खत में धड़कता था किसी अपने का नाम। आज भी याद आते हैं वो सुनहरे दिन जब मोहब्बत का सबसे खूबसूरत जरिया था एक खत और एक सलाम। क्यों दोस्तों, अब तो बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं। आज व्हाट्सएप और इमोजी का ज़माना है, लेकिन हाथ से लिखा हुआ एक खत और उसमें रखा हुआ एक फूल, उसकी बात ही कुछ और होती थी ना। उस एहसास की खुशबू आज भी दिलों में बसी रहती है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर देते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, बहुत दिन से आपने सोच के रखा है कि खुशी जी को हम कॉल करेंगे तो ये वाला गाना सुनेंगे, तो आज आपके पास ये मौका है, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मुझे अभी कॉल लगाइए, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, हाँ इसी पर कॉल लगाइएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: जय श्री महाकाल।
0: हाँ जी, जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका? सो
1: मैम शिवा लोहत, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी बताइए शिवा, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपसे बात करके और भी खुशी मिल गई। खुशी
0: जी जी, आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रही है सर।
1: ओके मैम
0: जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी, कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, कोई अपनी पसंद का गाना बताइएगा।
1: मैम देखिए, मूवी का नाम है तड़प।
0: हाँ जी,
1: उसमें कुमार सानू जी की आवाज में गाना रहेगा मैम, जो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
0: ओके ठीक है सर, ये प्यारा सा गाना आपको हम सुनवाते हैं। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं शिवा जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना। हम लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और मुझे फ़ोन लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप इस कार्यक्रम को मिस करें।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC, साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। अरे वाह दोस्तों, आज की तारीख भी 7 है और 7वां महीना है, और अगर आपका लकी नंबर भी 7 है तो आज तो आपका दिन बन गया। सोशल मीडिया पर भी एक मज़ेदार लाइन खूब वायरल हो रही है साथियों, तारीख भी 7 है, महीना भी 7 है, तुम्हारा भी 7 है, हमारा भी 7 है, हम साथ साथ हैं। अब इसका मतलब आप अपने अपने तरीके से समझ से निकाल लीजिएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, आज 7 जुलाई है तो स्माइल भी 7 गुना होनी चाहिए ना, और हैप्पीनेस भी 7 गुना होनी चाहिए। तो इसी खुशी वाले मूड के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सो? हेलो, लगता है सर फोन रखकर शायद कहीं डिस्टेंस पर चले गए हैं, फ़ोन को अपने आप से दूर रखकर चले गए हैं कहीं, बट कोई बात नहीं है। उन्होंने जिस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी, ये ट्रैक बहुत ही प्यारा है गाना, आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनूंगी। लेकिन हाँ, आपसे मैं फिर से अगेन बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी चलिए चलिए चलिए ऑन एयर बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश, कौन हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं? हेलो हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आप कहाँ चले गए थे फोन को रखकर साइड में?
1: मैं कॉल कट गई, मैं अंदर बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रही है ना बोलने का।
0: और हम इतनी देर से हेलो हेलो चला रहे हैं, आपको आवाज ही नहीं पहुँच पाई हमारी।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, आप बताइएगा कैसे हैं और अपना नाम भी बताइए सर।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आपके क्या हाल है?
0: जी हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आप अपना नाम बताइएगा।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से आज गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी सर बताइएगा, आपके यहाँ पर सब कैसे हैं और आप बताइए अपने हालचाल।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए।
0: जी जी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत ही आपके ब्लेसिंग से हैं, बहुत बढ़िया है हमारे स्टाफ में भी सभी लोग। आप बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: आज का मौसम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है।
0: ओके, रोज आप शिकायत करते हैं बहुत गर्मी है, आज फाइनली मौसम अच्छा हो गया है ना?
1: आज हल्की फुल्की बारिश हो गई थी सुबह, बहुत ही अच्छा मौसम है।
0: जी बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: मूवी का नाम है वारिस।
0: हाँ जी,
1: गाने के बोले मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: अरे वाह,
1: नाम है?
0: जी जी बिल्कुल बताइएगा सो।
1: अयुबा है, निशान भारती है, राजिया खान है मेरी वाइफ, सिमरन खान है, शनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रहीमुल्ला अंसारी, शानूर अंसारी, मसूद हुसैन, शारिक अली, इरशाद अली, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपकी फैमिली, आपके सभी दोस्तों के साथ और इस वक्त जितने भी हमारे सभी लिसनर सुन रहे हैं, सभी के साथ ये प्यारा सा गाना सुनिएगा। आप कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे गुफ्तगू, आपसे भी करेंगे बातचीत, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। और ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना लता मंगेशकर जी साथ में मनमोहन सिंह जी की आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। वैसे दोस्तों, बहुत सारे शहरों में बारिश हो रही है, बस मुरादाबाद में बारिश होती है लेकिन वो चली जाती है। पता नहीं कहाँ व्यस्त है जो मुरादाबाद में बारिश नहीं हो रही है। सब इंतजार कर रहे हैं, कुछ बूंदे आती हैं वापस नहीं जाती है। अभी मैंने देखा, चेक किया था तो दिल्ली NCR में बारिश हो रही है, नेक्स्ट लक्सर उत्तराखंड में भी बारिश हो रही है। बाकी दोस्तों, आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9837896896। अगले कॉलर से बात करते हैं अभी। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार, आपको भी सर अपना नाम बताएगा। जी सर, बहुत धीरे बोल रहे हैं, लगता है फोन से बहुत दूर हैं आप।
1: मैम, मेरे जो मोबाइल के मैच में कुछ जाने वाली आवाज जो है कुछ कमी है, पता नहीं मैल कुटल भरा क्या हुआ, मैं दिखाऊंगा इसको कभी करता।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मोबाइल में कभी कमी बोल गया, बहुत बोल गया, बहुत तेज स्पीकर बोल गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी बताइएगा कैसे हैं आप सर?
1: बस अच्छा मैम, लेकिन मैम आज तो बरसात होगी, मजा आ गया, एक घंटा बहुत पानी पड़ा हमारे यहाँ।
0: अच्छा, बारिश अच्छी हुई है?
1: बहुत बढ़िया वाली, मतलब बारिश में खेतों में पानी हुआ है, लेकिन मैम गर्मी बहुत रही है, कई दिन से इतनी भारी गर्मी थी रात में। मैम अब तो सोते हैं हम, पंखे में भी चैन नहीं थी मैम, पसीना नहीं।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी तो फिलहाल गर्मी से राहत मिल गई है ना आपको?
1: हाँ, तो राहत मिली है और इंशाल्लाह मिलेगी आगे भी।
0: जी बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं एक पुरानी फिल्म है काला पानी, उसमें रफी जी का गीत है, अच्छा जी महारी चलो मान जाओ ना, देखी तेरी यारी तेरा दिन चलाओ ना, इसी पुरानी कुछ टाइप बोल है मैम अपने वाले साथ में। पहले तो मैम आप हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन मोहम्मद तानिश जी, राजा हुसैन है हाजी गफ्फार खान साहब है जिनके फोन और मोहम्मद इशरत है, मुकेश है मेरा भाई है, इरशाद भाई है, सभी लोग।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गाना। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 98 300 98 896। फिलहाल इस गाने का लुत्फ उठाइए।

0: क्या बात है दोस्तों, इतने प्यार से अगर कोई मनाए ना तो कोई कितना भी रूठा हो वो भी मान जाएगा। और ये खूबसूरत से गाने की बात, खुशी हाजिर है फिर से आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम लेकर, हेलो फरमाइश, जिसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड अपने पसंद के गाने यहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, मैं अभी वक्त आपको बता देती हूँ, 4:20 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: फरमाई
0: हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: राजपूत बोल रहा हूँ, मेरठ में जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है। और आप?
0: मैं भी ठीक हूँ सर, बताइएगा, एमपी का मौसम कैसा है?
1: एमपी में बारिश हो रही है, हल्की हल्की, बढ़िया मौसम है, गर्मी से राहत मिल रही है, एक आध हफ्ता हुआ है।
0: अच्छा, हल्की बारिश हो रही है, तो बताइएगा इस हल्की सी बारिश में कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आप सुनवा दीजिएगा, बड़े घर की बेटी का तेरी पागल गति जहां मैं पागल हुआ था।
0: अरे वाह, बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुनवाते हैं आपको सर ये आपकी पसंद का गीत। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी आपका भी।
0: तो चलिए दोस्तों, ये सुनते हैं सर की पसंद का बहुत ही प्यारा सा गाना, फ्रॉम द मूवी बड़े घर की बेटी। और इस खूबसूरत गीत को गाया है मोहम्मद अजीज, साथ में अनुराधा पौडवाल जी ने। तो सुनते हैं बिना किसी देरी के इस शानदार गाने को।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

0: नमस्कार, मुरादाबाद, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में और मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ। जी हाँ, दो घंटे ये लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है जहाँ पर आप मुझे कॉल लगाकर अपनी पसंद की गाने सुन सकते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी बहना जी, प्रणाम, नमस्कार।

0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना नाम बताइएगा।
1: यादव, ग्राम उपरेटा, श्रीरामपुर डेरा, सरीला लाठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ बारिश हो रही है।
0: जी आपके यहाँ पर बारिश हो रही है, आप क्या काम करते हैं सर?
1: हम कृषक हैं, क्या काम करते हैं, आपकी खाड़ी सजाने का करते हैं।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस समय क्या लगा हुआ है आपके यहाँ पर खेतों में?
1: इस समय मूंगफली की बुवाई हो चुकी है बहन।
0: अच्छा, तो रिमझिम बारिश हो रही है आपके शहर में? जी बताइएगा, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर?
1: बेटा मूवी का सैया जी से छुपके हुई क्या बात बता दे बेलिया।
0: ओके ठीक है, गाना आपको सुनवाते हैं सर।
1: कुछ मित्रों को भी डेडिकेट करेंगे बहन।
0: जी जी बिल्कुल, बताइएगा अपने मित्रों के नाम।
1: एकता ग्रुप के श्री गुणवंत कड़ू जी हैं, गौतम राय भोली जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, दिलीप ऊजा जी हैं, सुनील झा जी हैं, और जितने भी हमारे इस समय लाइव फोन इन कार्यक्रम FM मुरादाबाद सुन रहे हैं, सभी को इसी गीत में शामिल करें।
0: अच्छा, मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहती हूँ। आपने इतने सारे अपने दोस्तों के नाम लिए, ये नाम आपको याद है या आप किसी पेपर पर लिख कर रखते हैं?
1: वह बहुत बड़ी लिस्ट है, हम लिख के रखते हैं, कुछ लोगों को इस गीत में याद कर लेते हैं, कहीं कॉल लगता है तो कुछ दोस्तों को कहीं याद कर लेते हैं।
0: अच्छा, वही मैं सोचूं कि इतने इतने अच्छे से आप सभी के नाम कैसे एक साथ ले लेते हैं? जी जी जी जी बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा गाना। आपको भी प्रणाम, नमस्कार। तो श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गीत, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता दी हूँ, 9837896896।

0: श्रोताओं, हम तो आपसे कहते ही हैं कि आप हमसे कोई भी गाना मत छिपाइए, हमें बताइए, हम प्ले करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ना। आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर खुशी आपके साथ है, आपके सफर को बना रही है सुहाना आपकी पसंद के गानों के साथ। और अभी बात करती हूँ मैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। सो
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया है। बारिश भी हो रही है थोड़ी करके दीदी, बहुत अच्छा मौसम है हमारे इधर।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, बारिश हो रही है, बारिश का आनंद उठाइए और हमें बताइएगा कौन सा गाना सुनेंगे आज आप।
1: दीदी फिल्म का नाम है आशिकी 2 और गाने के बोल इतना तो मुझको बता दे चाहूँ मैं आना।
0: ओके, आज ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी हमारे मित्र है केश सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, मोहम्मद हारून जी और तरुण अंसारी जी हैं और राजेंद्र गंगवाल जी, सबसे नाम सुनना चाहेंगे दीदी और सभी श्रोता जी लाइव सुनना सभी को डेडिकेट करेगा।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा से गाना।
1: सुनेंगे दीदी मेरे साथ?
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हम भी सुनेंगे और तमाम श्रोताओं को भी सुनवाएंगे आपकी पसंद का गाना, मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी आशिकी 2, अरिजीत सिंह, साथ में पलक मुछल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, चाहूं मैं या ना। फिलहाल मुझे पता है आप फोन लगाने की पूरा पूरा मतलब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी कॉल लग जाए, तो लग जाएगा, बस आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा। और अभी बात करते हैं आपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्ते, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैं सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर सितारे जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छा हूँ, इधर दो तीन दिन से बारिश हो रही है।
0: अच्छा, बारिश हो रही है, अभी कैसा मौसम है? अभी भी बारिश हो रही है वहाँ पर?
1: हुआ है 2 बजे।
0: अच्छा अच्छा, ओके, तो बताइएगा, आपके यहाँ का मौसम तो खूबसूरत है, जहाँ से भी हमें कॉल आ रहे हैं सब हमारे श्रोता बता रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो आप बताइएगा आज कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: नसीब का।
0: हाँ, नसीब का कौन सा गाना सुनना है?
1: मेरे नसीब में तू है कि नहीं, मेरे ओके। नसीब में मैं हूँ कि नहीं।
0: जी, और ये गाना किन को डेडिकेट करते हैं आप? कौन है आपके प्यारे साथी, जरा उनका नाम बताइए। ओके,
1: गजराज लोधी है।
0: हाँ जी,
1: विजय कुमार पांडे है। और शारदा बाबू है, और मेरी बहन आप हुई।
0: ठीक है, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं नसीब मूवी का ये प्यारा सा गाना जो 1981 में आई थी, लता मंगेशकर जी, लता जी की आवाज़ में। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में प्यारा सा गाना हम सुनने वाले हैं, लौट कर आते हैं, तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

0: किया। क्या बात है दोस्तों, अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी नसीब का। और दोस्तों आज हमारे श्रोता जो बहुत कॉल को ट्राई कर रहे थे, नंबर ट्राई कर रहे थे कॉल बातचीत करने का, अगर आज आपसे नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, आपको ये मौका कल भी मिलेगा सेम टाइम सेम जगह। तब तक बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मारू।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: से बात कर रहे हैं मैम।
0: जी जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी वो गाना के बोल है कुछ इस तरह से कि किसकी बरसा पानी पानी में आग लगाई।
0: ओके ठीक है सर, ये गाना आपको सुनवा देते हैं, आपने कॉल किया धन्यवाद आपका।
1: ठीक है मैम,
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं प्यारा सा गीत, और इसी गाने के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। मिलूंगी मैं आपको कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। और नेक्स्ट कंपनी अब आप एंजॉय करने वाले हैं आरजे रीना जी के साथ हरिया शाम को इवनिंग मस्ती शो में, जहाँ पर वो ढेर सारा फन एक्टिविटीज आपके लिए करने वाली हैं। एंड और क्या कुछ खास होने वाला है वो तो वो ही बताएंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा ना, तो थोड़ा सा बचा कर रखते हैं। आपको नेक्स्ट कंपनी देने वाली है अर्जेंटीना, और आप बने रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। इस सुहाने से मौसम में अपनों के साथ रहिए, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाइए, चाय बनाइए और खाइए पिए, लुफ्त उठाइए।

0: सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। समय की बात करूं तो 5:10 हो चुके हैं और वेदर की बात करूं तो 34 डिग्री सेल्सियस है। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि भैया इस मौसम में ना देखिए थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंड, थोड़ी बरसात, थोड़ा आंधी तूफान इतनी ज्यादा कि भैया कब किस गली से निकल जाए आपको भी नहीं पता लगेगा। सो ढेर सारी बातें करेंगे आरजे रीना के साथ। कनेक्ट रहिए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं। आज का दिन क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल नहीं है, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो आरजे रीना के साथ आप बने रहिए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और भैया अभी मुरादाबाद में तो बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन दिल्ली NCR में जम के बारिश हो रही है भैया। जहां बस भगवान जी इधर भी आ जाओ यार। खैर जब बारिश आएगी भैया तब तो रुक नहीं पाती है, मजा आ जाता है। फिलहाल एक गाना और भी शानदार, उसके बाद और भी आपको मजा आएगा।
1: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
2: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: से तेरा जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया।
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है अर्जुरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर चलाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो इवनिंग मस्ती शो में आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है। समय हो चुका है 5:20 श्रोताओं, और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए बरसात के मौसम में ना गाड़ी आपने धीरे चलानी है। जो आपके आसपास वाले पैदल है, ई रिक्शा में है, उनका भी आपने ध्यान रखना है। और इस बरसात में ये नहीं सोचना है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि इस मौसम का आनंद लेंगे और भीगते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए भीगना अच्छी बात है, लेकिन आपकी सेफ्टी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे बारिश हो चाहे ना हो, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ कहा नहीं जाता, और एक ये हमारी जिम्मेदारी समझिए या कुछ समझिए, लेकिन हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और आंधी तूफान के समय आप खुले एरिया में जाने से बचे, आप खुले एरिया में जाने से बचेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। और आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको भी पता है कि मौसम अब चेंज हो चुका है, तो अपने साथ छाता रेनकोट ज़रूर रखें। कुछ नहीं पता कब मौसम करवट ले ले और आप छाता रेनकोट लेकर बाहर नहीं जा रहे हैं तो भीगने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें बाहर लेकर ज़रूर जाना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। गर्मी में तो वही छाता फेस पे दुपट्टा कवर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि धूप जब लगती है ना तो बहुत तेज़ वाली धूप लगती है और फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें बेहद ध्यान रखना चाहिए। और यूं ही अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट रहे, ढेर सारी बातें करेंगे, आखिरकार जानेंगे इसके बाद यानी कि आज का स्पेशल डे क्या होने वाला है। क्या आपने अभी तक किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर आपके दोस्त हो, घर में मम्मी पापा हो, भाई हो, बहन हो, क्या आपने किसी को दिया है? क्या है वो, क्या देना है आज आपको? आपको भी पता है आज, है ना? वो भी बताएंगे हम, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आज का डे बहुत ही मीठा वाला है, बहुत खास है। रिश्तों में मिठास होनी बहुत ज़रूरी है, जब तक रिश्तों में मिठास नहीं होती है ये ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है जी। चलिए जी,

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का दिन ना हमारे लिए बेहद बहुत खास है, क्योंकि आज है यानी कि 7 जुलाई, और 7 जुलाई अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। और ये डे आखिरकार क्यों मनाया जाता है आप जरूर जानना चाहते हैं ना। सो भाई, कुछ डेज ऐसी होती हैं जो हमारे रिश्तों में ना मिठास डाल देती है, और आज चॉकलेट डे है। चॉकलेट सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि खुशियों की एक छोटी सी सौगात है। बच्चों हो या चॉकलेट का नाम सुनते ही चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। क्या आप जानते हैं, चॉकलेट की शुरुआत यानी कि कोको बंसी से हुई थी। इनकी यानी कि मतलब डार्क जो चॉकलेट, मिल्क, वाइट चॉकलेट तैयार की थी इन्होंने। मतलब इनको ये था कि भाई कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करना है, और आज का दिन यही खास है, इसीलिए चॉकलेट डे मनाया जाता है। आज के दिन आप अपने परिवार, दोस्तों या किसी भी खास व्यक्ति को एक छोटी सी चॉकलेट देकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकते हैं। आखिर खुशियाँ बांटने का सबसे मीठा तरीका भी यही तो है कि कोई भी आपसे नाराज होता है या कुछ भी हो जाए, हमें चॉकलेट जरूर देनी चाहिए। बहुत से का भाई यही कहना था कि भाई ये जो चॉकलेट डे है यानी कि ये फैब के महीने में आता है, लेकिन जो ये वाला चॉकलेट डे है ना बेहद खास है। वो ये सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं होता है, इसमें हर कोई इंक्लूड होता है। फैमिली, भाई बहन, आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जिसको जिसे हम बातें करते हैं। और आज आपने मैसेज करके बताना है कि आपने आज आपके लाइफ में ऐसा कौन स्पेशल है जिसको आपने आज चॉकलेट दिया है। जी बिल्कुल, आज बहुतों ने बहुतों को चॉकलेट दिया है और बहुत से प्यार बांटा है, तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है चॉकलेट डे। और समय की बात कर दोस्तों तो 5:33 हो चुके हैं आरजे रीना के साथ। सो यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और ढेर सारी बातें करते रहेंगे, और एक बहुत ही शानदार वाला गाना सुनवाएंगे आप सभी को, क्योंकि आज चॉकलेट डे है और चॉकलेट डे पर ये गाना ना प्ले हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझ चुके होंगे कि आज मैं कौन सा

हम आपके हैं कौन मूवी से ये गाना है, बहुत ही शानदार। और ये गाना सिर्फ मेरा ही मेरा फेवरेट नहीं है, आप सबका भी ये गाना फेवरेट वाला है। और आई नो कि अब भाई हम नए गाने सुनने लगे, लेकिन जो पुराने गाने हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। एक एक शब्द कितना सुकून भरा होता है ना, और बड़े से लेकर बड़े तक हर कोई समझ लेता है इस गाने को। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और लौट कर आते हैं इस स्टेशन पर।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है गुरु रंधावा की आवाज में। और आप फिलहाल आरजू रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, जहां समय की बात करूं तो भैया 5:42 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी से ये कहना चाहेंगे अरे बस आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखिए किसी चीज को ना हम बड़ी शिद्दत के साथ खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उसको हम लेकर जाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, और जब आपको पता चलता है कि वही चीज जो आपने बड़े शिद्दत से खरीद कर वहां पर ले जाकर कब तक, मतलब 2-3 महीने से तो प्लानिंग करते रहते हैं कि कब खरीदना है, कब प्लानिंग होगी हमारे जाने की, लेकिन जब वही आपको अगले दिन पता चलता है कि वहां से चोरी हो गई है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा रहा है कि मंदिर में जो पंडित

0: मन से कहते हैं ना, भगवान ने तो सिर्फ ये कहा कि आप अपना कर्म करो, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, 4 घंटे की लाइन लगाओ। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर में नहीं जाना, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उसको समझना चाहिए। बस कर्म करिए, भगवान ने सिर्फ ये कहा कि आप कर्म करो। और आप ऊपर से देखिए, आपके मन में बड़ी श्रद्धा भी है। अब हम कितने खुश होकर जाते हैं ना मंदिर में, लेकिन कुछ नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द कौन रहते हैं। मतलब जाते वो भी इसी मनोकामना से कि हम दर्शन करके आएंगे, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पकती है भैया, कि वाओ यहाँ पे सोने चांदी पैसे जो दिखते हैं ना, और मन में मतलब पाप धोने जाते पाप करके आ जाते हैं। तो भैया इस चीज का ध्यान रखिए, मंदिर में चोरी करना पाप है। देखिए जब आप भगवान को नहीं छोड़ रहे तो इंसान क्या ही कह सकते हैं फिर। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और फिलहाल तो पॉकेट वाला जो कपड़े हैं वो तो पहना बैन ही हो गया है। और मेरे पास एक बहुत ही शानदार मैसेज आता है, सो चलिए उसको भी शामिल कर लेते हैं। नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। आज मौसम बहुत मस्त हो रहा है, आपको सुन रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, और मैं आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत बेचैन रहती हूँ। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत दिल से सुनते हैं, और आप गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि विहार से। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ रूपाली जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से। और इनका कहना है कि भैया आज सुबह सुबह जिस हिसाब से थोड़ा धूप निकला था ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा गर्म रहने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी देर यानी कि 8 बजे के बाद मौसम का जो रुख है वो चेंज हो गया, और फाइनली यानी कि 10 बजे के बाद बारिश आ गई थी। तो मुझे तो बड़ा मजा आया, लेकिन बारिश यानी कि 4-5 घंटे होने चाहिए थे बिल्कुल जमकर, तब मजा आता। रीना मैम आप प्लीज बोलो भगवान जी को कि आपके पास तो नंबर है ना, तो बोल दो बारिश आ जाए। अरे आएगी आएगी, बस थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए, सब्र का फल बड़ा ही मीठा होता है, क्योंकि भोले बाबा भी तो आने वाले हैं ना। देखिए वो आएंगे तो बरसात लेकर आएंगे। देखिए अब कहीं कहीं पर तो बाढ़ आ चुकी है, और कहीं कहीं पर तो अभी बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई जा रही है, यानी कि कहीं कहीं की जो जमीनें हैं वो बंजर हुई पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो ये तो भगवान की लीला है, अब उनकी लीला कौन ही जान सकता है। बस हमें सब्र रखिए, बारिश जरूर होएगी। और देखिए जब बारिश के में नीड होती है ना तो बारिश नहीं होती है, जब बारिश की नीड नहीं होती है तब बारिश होती है, यानी कि जब फसल पक जाएंगे तब बारिश आएगी, देख लेना। उस टाइम तो बहुत आती भैया, जगह जगह आप सुनेंगे कि बाढ़ आ गई है, खेतों की जो फसलें हैं वो खराब हो गई है, और उसके बाद फिर से महंगाई चरम सीमा पर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो जाती है उस टाइम। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, और उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं और करेंगे ढेर सारी बातें।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है अर्जेंटीना के साथ। और समय की बात करूं तो देखिए भैया 5:54 हो चुके हैं श्रोताओं, और अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और ये कहा जा रहा है देखिए रक्षाबंधन का जो दिन है वो भी आने वाला है, अब पॉकेट का जो खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, है ना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भैया दिल्ली में कि जो 21 साल से लेकर 60 साल की जो लेडीज हैं उनके लिए एक योजना जो चलाई जाएगी उसमें ये है कि जो रक्षाबंधन के मौके पर यानी कि उनको गिफ्ट मिलेगा 2500 का, जी 2500 का, यानी कि उनको अकाउंट में उनके पैसे आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं, यानी कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और इसी मौके पर उनको बहुत ही शानदार गिफ्ट मिलने वाला है, यानी कि पैसे उधर से आए या इधर से जाए, रक्षा राखी तो खरीदना ही है जी। ऊपर से जो भाइयों के पॉकेट से जो पैसे आते हैं अपने पास, यानी कि देखिए आए ना आए लेकिन वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो अब ये देखा जा रहा है भैया अगर आप इस मौके का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे कैसे उठाना है कैसे नहीं उठाना है। लेकिन उससे पहले गाना और फिर मिलेंगे 6 बजे आप सभी के साथ श्रोताओं, जहां करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए एक और शानदार गाना।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग अदिपुणा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news.
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। फाइनली यानी कि देखिए भैया, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। 6:05 हो चुके हैं और आज जिनका बर्थडे है उनके दीवाने हर कोई है। अगर आपको पता है कि आज किनका बर्थडे है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। भैया नंबर है 9837896896। सोचिए, लौट कर आते हैं और फिर बताते हैं कि आज किनका बर्थडे है। अगर आपको पता है तो आप मैसेज कर सकते हैं जी। मुझ पे नजर

0: क्या बात है जी, दिल तो हर किसी का लूट ही लिया है, लेकिन वो है कौन? चलिए बताते हैं आपको श्रोताओं, क्योंकि देखिए उनके बारे में कौन नहीं जानना चाहता है, हर कोई बेसब्री से जानना चाहता है। भैया आज जिनका बर्थडे है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, लाखों लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, और कहते हैं ना उनके जैसा फिर कोई आ जाएगा, लेकिन उन जैसा कभी कोई नहीं आ सकता। सो आज हम बात करने वाले हैं, इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 6:10 हो चुके श्रोताओं, और आज की तारीख 7 जुलाई बेहद खास है, चॉकलेट डे, और साथ ही साथ एक और बहुत ही खास डे। कहते हैं सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने का हौसला हो, और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। यानी कि 7 जुलाई 1981 को झारखंड की राजधानी रांची में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी का सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। एक साधारण परिवार में जन्मे धोनी के पिता यानी कि पान सिंह और माता देव की देवी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन धोनी जी के दिल और दिमाग में तो बस एक ही चीज बसा हुआ था, क्रिकेट। जो कुछ भी खेलना हो लेकिन मैच जरूर खेलना है, दिल और दिमाग में बस एक ही, वो मैच की गूंज, बस उनके और मैदान की गूंज वही दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिकेट में नाम कमाने से पहले धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर यानी कि TTE के रूप में काम करते थे। दिन में नौकरी और खाली समय में क्रिकेट की मेहनत करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनकी यही रोज का संघर्ष था। और शुरुआत में धोनी जी यानी कि फुटबॉल के गोलकीपर भी थे, और यही उनकी मेहनत लगन देखकर उनके कोच ने उनको कहा कि तुम तो कहाँ फुटबॉल में हो यार, तुम मैच की दुनिया में जाओ, धमाल मचाओगे, एक दिन इतिहास में तुम अपना नाम कमाओगे, गिनी बुक में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और तुम हो, तुम्हारे भविष्य में देखा जा रहा है कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत लोगों के दिलों में आप तुम राज करोगे, तो क्रिकेट की दुनिया में जाओ तुम। वहां से उनकी शुरू हुई कहानी, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे वो पूरे दिन नौकरी करते थे लेकिन जब खाली समय मिलता वो प्रैक्टिस जरूर करते थे। और उनके पीछे उनके दोस्तों की कहानी, आय हाय, जब दोस्त आपके जिंदगी में अच्छे हो ना तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप उसको सफल, आपका काम नहीं हो सकता, हर काम आपका सफल हो जाता है। साल 2004 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए यानी कि शुरुआत की, लेकिन फिर भी आसान नहीं रहा। लेकिन 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन और फिर श्रीलंका के बीच यानी कि मुकाबला खेला गया, तब 183 रन की पारी खेली उन्होंने, और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेटर एक नया सितारा मिल चुका है, यानी कि क्रिकेट के दुनिया में एक और खिलाड़ी उनको मिल गया है, और वो है महेंद्र सिंह धोनी। साल 2007 में जब भारतीय टीम की कप्तानी उनके हाथ में आई, तब उन्होंने युवा टीम के साथ पहला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद 2011 वनडे विश्व कप और 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीतकर धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान बने जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफियां अपने नाम की। मैदान पर उनका शांत स्वभाव, मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसले लेने की क्षमता और आखिर ओवर तक हार ना मानने का जज्बा, उन्हें इसीलिए कैप्टन कूल कहा जाता है, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। तो आज इनका बर्थडे है, हमारी रेडियो की टीम की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी जी को हैप्पी वाला बर्थडे। और आप यूं ही अपनी जिंदगी में रोक मचाते रहे। और देखिए, जिनको भी उदाहरण लेना है ना कि कहते हम हार गए जिंदगी से, वो इनकी कहानी जरूर पढ़िए। आप कभी हार ही नहीं सकते जिंदगी में। तो चलिए श्रोताओं, लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। कहीं नहीं जाना जी, बस आज रीना के साथ आपने कनेक्ट रहना है। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और एक महेंद्र सिंह धोनी मूवी से गाना है, वो जरूर आपको मैं सुनाऊंगी।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं अरिजीत की आवाज में। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, क्या बात है जी। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 6:26 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, यात्रा तो हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि भैया चलो भोले बाबा के दरबार चलते हैं, है ना। अमरनाथ की यात्रा जो कि 3 जुलाई से ही यानी कि शुरू हो गई थी, सो अब ये कहा जा रहा है उनके लिए यानी कि पहले से विशेष जो सुविधाएं हैं वो अब की बार रेडी कर दी गई है। यानी कि श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होए, उनके लिए कड़ी से कड़ी सुविधाएं वहां पर तैनात है। और साथ ही साथ यानी कि भारतीय रेलवे ने जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेनें यानी कि सुविधा है वो शुरू कर दी गई है, और भी जो ट्रेनें हैं ये चलाई गई है ताकि यात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी ना होए, वो आराम से यात्रा कर सके। और भैया एक दिन में ही इतने ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं ना कि भाई क्या ही कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप कितने बिजी क्यों ना रहे, लेकिन जब भगवान के लिए टाइम निकालना होता है ना तो वो निकाल ही लेते हैं। और अब की बार यानी कि आधार कार्ड से KYC रजिस्ट्रेशन हर चीज इसलिए कराया गया कि कोई इंसान अगर गुम हो जाता है तो उसको आसानी से ढूंढ रहा जाएगा, कोई भी ऐसी परेशानी है तो उसके साथ खड़ा रहा जाएगा। इसलिए हर चीज सुविधाएं अब की बार बहुत ही अच्छी कड़ी मेहनत से की गई है। तो अगर आप अमरनाथ की यात्रा भैया करने वाले हैं और शुरू कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयां जी, लख लख बधाइयां जी। बस भगवान का नाम लीजिए, अमरनाथ यात्रा आराम से करिए। चलिए जी, यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। अब लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए कड़क सवाल, यानी कि आज का कड़क सवाल क्या रहने वाला है वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल एक गाना एंजॉय करते हैं जी।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नेक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

हाय हाय, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया ओम शांति ओम मूवी से, और विशाल ददलानी की आवाज में ये गाना श्रेया घोषाल जी की। ओ माय गॉड, आज रीना के साथ कनेक्टेड जी। समय की बात करूँ तो 6:38 हो चुके हैं, और इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल, और बहुत ही आसान है। अगर आप उनके फैन हैं तो आप आसानी से रिप्लाई दे पाएंगे। आज बस ये देखना है कि भैया उनके फैन आखिरकार कौन कौन है। पता चल जाएगा आप सभी के मैसेज आने के बाद ही पता चलेगा कि आप वाकई में उनके फैन हैं, या फिर यूं ही कहते रहते कि यार चलो काम छोड़ देते, मैच देखते। काम छोड़ो यार, पहले मैच है। लेकिन आप पता चलेगा कि वाकई में आप उनके दीवाने हैं, तो आप मैसेज आसानी से कर पाएंगे। आज का कड़क सवाल ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जी के जर्सी के नंबर बताने आपने, कि उनके जर्सी के नंबर कौन सा है भाई। क्या जल्दी महसूस करके बताइए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी जी के जर्सी का नंबर आपने बताना है। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए एक और शानदार गाना भाई देखना है कि आज महेंद्र सिंह धोनी के आप कितने दीवाने हैं। क्या वाकई में उनके जर्सी का नंबर आपको याद है या नहीं याद है, सोचिए। गाना आप सभी का इंतजार कर रहा है।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूं तो देखिए 6:40 हो चुके हैं, यानी कि समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा है श्रोताओं। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.4। सो बहुत सी चीजें हैं जो हम गलत सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, अगर आपको कोई याद करे तो वो ऐसा हो सकता है। यानी कि बात करने वाली हूं मैं, जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि खाना खाते समय और पानी पीते समय आपको धसका एकदम बहुत तेज वाला लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है। बहुत टाइम से किसी ने याद नहीं किया होगा तो मुझे याद कर रहा है, और खाने के टाइम क्यों याद कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई याद नहीं करता है। ये पहले के टाइम का था, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर आपको कोई खाते समय याद कर रहा है, अगर आप पानी पी रहे तब आपको धसका आ जाए, अगर आपको कोई याद कर रहा है तो समझिए अगर धसका आया तो आपको मतलब याद कर रहा है कोई ना कोई आपको। लेकिन ये दरअसल गलत है, बल्कि जब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वही खाना वही पानी आपके श्वास नली में जाता है, तब आपको बहुत तेज धसका लगता है। और सो इसीलिए कहना चाहेंगे आप सभी से कि देखिए खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, प्रेम के साथ खाना खाइए, पानी पीजिए। और खाना खाते समय आपका ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए, ना कि फोन देखने पर और किसी से बातें करने में। आजकल क्या होता है कि हम फोन देखने लग जाते हैं, कार्टून देखने लग जाते हैं, और टाइम पता ही नहीं चलता भैया कि हम खाना खा रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, है ना। और जब बातें करने लग जाओ तो यही रीजन होती है कि आप खाना खाते समय आपका ध्यान कहीं और होता है, आप जल्दबाजी में होते हैं, तो वो आप खाना खा रहे हो वो श्वास की नली में जाता है, तभी श्वास की नली आपको एकदम संदेश भेजता है कि आपका जो खाना है वो श्वास की नली में चला गया है, और इसीलिए धसका आता है ताकि आप बच सके। अदरवाइज उस नली से अगर आपका जो खाना है वो नहीं निकला तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा हो जाता है। इसीलिए खाना खाते समय सिर्फ और ध्यान खाने पर होना चाहिए, और प्रेम से खाना खाइए, क्योंकि खाना है वो हमारी आत्मा को तृप्ति देता है। इसीलिए खाने को आराम से खाइए, और यूं ही आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है, एक और आपको मौका मिल जाएगा जी। मौका ये है कि आज का कड़क सवाल बहुत ही आसान पूछा है मैंने आप सभी से। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी जी के फैन

तो आप मैसेज जरूर करेंगे और आज पता चल जाए कि भैया कौन कौन महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं। उनके जर्सी का नंबर आपको बताना है कि उनके जर्सी का नंबर क्या है क्या नहीं है। सोचिए, फटाफट मैसेज करिए क्योंकि समय है हमारे पास, डोंट वरी। फिलहाल गाना सुनते हैं जी, आप मैसेज भेजते रहिए, नंबर है 9823789698। क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की है।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं भैया, कि किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। और आज का फाइनली क्वेश्चन जो मैंने आप सभी से पूछा है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल आपने सोचने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़नी थी जी। चलिए देखते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास।

संजू जी का मैसेज आता है, हाय कैसे हैं जी, बहुत बढ़िया है और हमारे घर दाल की और आलू की कचौड़ी बनी है, आप कौन सा खाना चाहेंगी? मुझे तो दाल वाली कचौड़ी यानी कि बहुत ही पसंद है जी। चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। राधिका जी हमारे साथ कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि 7 नंबर उनका लकी नंबर है। ओहो क्या बात है जी, इसीलिए उनके जर्सी का नंबर होता है 7। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राज टीचर विवेकानंद मुरादाबाद से। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन है आपकी एंड आप गाने भी बहुत अच्छे प्ले करती हो, थैंक यू सो मच सर। और महेंद्र सिंह की जी के यानी कि धोनी के जर्सी का नंबर है 7। मुरादाबाद से रणवीर सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और जर्सी का नंबर है 7। राजा कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और जर्सी का नंबर है 7। बबली अंजान जी, गीता कश्यप, ललिता जी, आपके सवाल का जवाब होता है 7। रूपाली जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि जर्सी का नंबर है 7। कुणाल जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दिल्ली से और इनका कहना है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी सर का बहुत बिग बिग बिग बी वाला फैन हूँ, मतलब मैं उनके इतना ज्यादा फैन हूं ना कि पूछिए मत, और उनके जर्सी का नंबर है 7। क्या बात है जी। और इनका कहना है कि भैया गाड़ी में हूं मैं और ब्लूटूथ से मैंने कनेक्ट कर रखा है और आपकी जो रेडियो है मुरादाबाद का रेडियो है वो सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो आप और बातें भी आपकी बड़ी अटपटी चटपटी, मजा आ गया सच में, खट्टी मीठी बातें करती हो आप, यानी कि चॉकलेट डे है तो देखिए मैंने चॉकलेट आज अपनी मम्मा को दिया है और मेरे लिए मेरी मम्मा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या बात है जी। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राहुल जी मुरादाबाद से और इनका कहना है कि राइट आंसर है 7, जर्सी का नंबर। रित्ति का मैसेज आता है हमारे पास और इनका कहना है कि जर्सी नंबर 7। अरे मैडम कैसे नहीं पता होगा, आखिरकार उनके हम फैन जो है, क्या बात है जी। पूजा जी का मैसेज आता है और इनका कहना है कि जर्सी नंबर 7। महेंद्र जी, ओहो देखिए आपने महेंद्र जी के बारे में पूछा है और मेरा नाम महेंद्र ही है जो कि मैं मुरादाबाद से हूँ, बुद्धि विहार से, और उनके जर्सी का नंबर है 7 क्योंकि मेरा और उनका जो नाम है वो सेम है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या बात है जी। श्रोताओं इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर आया था वो है राधिका जी कनेक्ट हुई थी तो आप बनती है आज इवनिंग मस्ती शो के विनर। तो देखिए मौसम भी बड़ा औसम है, अपने घर पकौड़ी बनाइए और एंजॉय करिए। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर और यूं ही अपना ध्यान रखिए और जिंदगी में खुश रहिए क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है श्रोताओं। जब आप खुश रहते हैं ना तो हर काम है बड़े आसानी से आप कर लेते हैं। और एक और प्यारा सा गाना इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे जी, बाय, टेक केयर।

0: और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है, एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर

0: पहुंचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खान पान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 17 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: सुनो

0: वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहाँ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहाँ सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियाँ, जलेबी की मिठास, पान की गुलियाँ और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बानी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की मह तक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योर फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI हंसी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: मैं मुनीश शर्मा, मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जिला विकास समिति DDC चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की।
3: बैठक में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जर्जर सरकारी विद्यालयों के पुनर्वास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा और मानसून के दौरान संभावित जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समन्वित और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने को कहा, ताकि नागरिक इस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण करा सकें। अर्जु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक के लिए शक्ति सिंह।
2: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर लगभग 3 वर्षों से रिक्त दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया है। महिला और बाल विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार ओम प्रकाश व्यास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल गौतम, कुंदन कंसकार, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सभी नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग का नया नेतृत्व बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सेंट्रल रिज स्थित राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर और नानकपुरा रिज में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
4: पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के बाद श्री शाह ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, 3 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो और नंद नगरी स्थित आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की आधारशिला रखी तथा नरेला हाई सिक्योरिटी प्रिजन परियोजना का ई शिलान्यास

0: न्यास किया। ये पहल स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली के निर्माण को नई गति प्रदान करेंगी। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर ऐसा तंत्र बनाया जाएगा जिससे गोबर का उपयोग गैस और प्राकृतिक खाद बनाने में हो तथा अपशिष्ट कचरे को यमुना में जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही 11 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जो प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
1: 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीज का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीज को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण को समान प्राथमिकता देते हुए राजधानी को अधिक हरित, स्वच्छ तथा टिकाऊ बनाने के लिए कार्य कर रही है।
2: इस पर्यावरण को संरक्षित करने का 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता।
0: इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाना, वायु प्रदूषण कम करना और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा तथा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और गृह मंत्री आशीष सूद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान और कई परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मल्होत्रा ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी स्वागत किया। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के 250 वार्डों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि 5000 हेक्टेयर से अधिक रिज क्षेत्र को अधिसूचित करने, 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाने, 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, नरेला उच्च सुरक्षा जेल, नए बस डिपो और स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र जैसी परियोजनाओं से राजधानी के पर्यावरण, परिवहन और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
4: हाई सिक्योरिटी नरेला जेल और उससे महत्वपूर्ण दिल्ली के फेफड़ों के रूप में रिज को विकसित करने का काम हमेशा की तरह दिल्ली सरकार की हैंड होल्डिंग करते हुए आदरणीय गृहमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों सौगात दी है और दिल्ली के पर्यावरण, दिल्ली की यमुना आदि चीजों में सुधार के लिए सदा अपना सहयोग वो देते रहे।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तथा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ TB मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। TB उन्मूलन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और TB मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारियों द्वारा आयोग की शिकायतों पर की गई कार्रवाई, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों के पालन और सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ मुक्ति मोर्चा तथा एशियाड श्रमिक मामलों में दिए गए आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस ऑनलाइन सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव या उसके प्रतिनिधि, श्रम आयुक्त तथा संबंधित सभी जिलाधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आज से राजभाषा हिंदी और विभिन्न कार्यालयों में उसका प्रयोग विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन कुमार पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग सुशासन और जनसंपर्क को मजबूत बनाता है। 13 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति, कार्यालय हिंदी और प्रशासनिक लेखन जैसे विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खेरवार ने आज दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय, बेर सराय, डियर पार्क और एकता कैंप क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित कूड़ा उठाने और मॉनसून से पहले नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेरवार ने कटवारिया सराय और डियर पार्क के ढलाव पर 2-2 कचरा प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करने के निर्देश भी दिए, जिससे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था और बेहतर हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अत्याधुनिक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से प्रभावित होकर अपना गिरोह बना रहा था और हथियार जुटाने के लिए लूटपाट और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। मामले में हथियारों के स्रोत और गिरोह की अन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 200 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक 4-पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच अब भी जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये झूठा दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। उसने आगे स्पष्ट किया कि प्रसारित हो रहे वीडियो का इससे कोई संबंध नहीं है और ये भारत चीन सीमा से संबंधित भी नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान उन्होंने श्री गोयल के साथ दिल्ली के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजधानी में व्यापार, उद्योग और निवेश के मौकों को मजबूत करने, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 स्टूडेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय वर्षा के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं सवेरे और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की बारिश होने की भी आशंका है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Nibapu.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
6: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफ कोर्स ये शाम जब आती है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है। सुबह हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आती है ना, वैसे जाते जाते शाम हमें बहुत कुछ देकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है ना जी। और आज की शाम में कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, मतलब आई नो दैट आप रात भी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा शहर की लाइटें ऑन हो गई, आपके घर की लाइटें भी ऑन हो गई है ना, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने, कुछ शायराना अंदाज में कुछ खूबसूरत सी बातें करने आपके बीच पहुंच गया हूं। एक बार फिर से मेरे स्टूडियो में कोई खास है जिनके साथ आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करने वाले हैं। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, यह है आपके शहर का अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, और भैया देखो, बातचीत का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है तो मुझे बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता, वहां पे आके आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छी शायरी करते हो, जो भी व्हाटएवर, जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप मुझे प्लीज बताएं। हो सकता है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ स्टूडियो में हो और आप यहां बैठ के ढेर सारी अपने मन की बात हमारे मुरादाबाद की जनता से कर रहे हो, है ना? आपका मन कर रहा है ना, तो बस फटाक से मुझे डीएम कर दो। चलो आज की शाम को थोड़ा सा एकदम धुरंधर बनाते हैं। आज की शाम हमारे साथ एक सुल्तान मौजूद हैं, मुरादाबाद के सुल्तान जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले इनका वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
7: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई, अच्छी रही।
6: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ये पहली मुलाकात है। वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टेशन में आप आए हैं तो आपका खुली बाहों के साथ वेलकम करता है आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ यार, अपने नाम वाम बताओ मेरी जनता को जरा।
7: मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा ग्राम इकोंदा से रहने वाला हूँ, जोया के पास पड़ता है।
6: अच्छा, मुरादाबाद की जनता जानती होगी शायद, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुरादाबाद से नहीं हूँ, बट अब तो मुरादाबाद बहुत अच्छे से मुझे भी जान गया और मैं भी जान गया हूँ मुरादाबाद को। तो अजीम ये बताओ कैसे लग रहा है ऑफिस में, आप आए हो पहली बार, आप रेडियो पे आए हो? उससे पहले कभी नहीं आए हो?
7: नहीं।
6: अच्छा,
7: बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आपसे, खासकर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, लहजा।
6: भाई आपका लहजा और आपका कम्युनिकेशन भी अभी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर। मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है लड़का यहाँ पर। अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार।
7: आनंद भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम।
6: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार, ये मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। क्या किया है, क्या किया?
7: बीएससी कंप्लीट,
6: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे का क्या चल रहा है?
7: आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का।
6: क्या बात है, अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार भाई, ऑल द वे बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो मतलब प्रिपरेशन करते करते आप जो है जो अभी यहाँ पर सुनाने पहुंचे हो, ये वाला टैलेंट कैसे आया?
7: ये बस लिखने का शौक पड़ गया था, लिखता था, लिखने लगा, आगे को बढ़ता रहा, लोगों के ओपन माइक्स करने चालू करे, चीजें मिली, अच्छा लगा लिखने पर, लोगों को सुनाई अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने कहा बढ़िया लिखता है यार, कहीं अच्छी जगह जा। फिर आपसे मुलाकात हुई एक ओपन में, वहां से इंट्रोडक्शन हुआ।
6: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो भाई के साथ में पहला कॉन्वर्सेशन था वो एक ओपन माइक में था। मैं एक्चुअली मुरादाबाद की जनता को भी ये चीज बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहां जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया। शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए, क्यों भाई?
7: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड।
6: हाँ अनएक्सपेक्टेड था, मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आए, राइट? इसी वजह से। बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है जरा बताओ?
7: आनंद भाई मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं।
6: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा। यार गाना बहुत अच्छा है, मैं शायर तो नहीं मगर हसी, तुम्हें देखा तो शायरी आ गई।
7: आ,
6: हम लोग इतने का गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार। फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है, तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा है वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफ एम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आर जी आनंद के साथ ये जो कॉन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना। है ना?
1: हाँ।
0: अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चल फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: पेश मैं कहना चाहूंगा, सबको किसी ना किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी ना किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार।
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। आप ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बसता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे? आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा दिया जो उसने था, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा दिया जो उसने था, ना चला पाया मैं जोर उस पर, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था, और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये भी चला गया तो याद कौन दिलाएगा, उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना कुछ होना हो उसकी याद जरूर हमारे साथ होती है। आप सब कुछ बुला सकते हो लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते हैं ना लोग, कहते तो हैं अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं,
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगी तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था, आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी, मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे तो। वेल कुछ बढ़िया सी कुछ और कुछ शेरो शायरी बढ़िया कुछ कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो, आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो, तो कुछ
1: क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी,
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
0: अरे यार तो ये मोहब्बत वाली तो मोहब्बत वाली पे छेड़ दे भाई,
1: बताता हूँ ना, बताता हूँ सुनो, अगर पसंद नहीं आए तो।
0: अरे नहीं बिल्कुल आएगी भाई बिल्कुल।
1: मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया। मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ,
0: कुछ दोस्तों को तो पा लिया,
1: उसे पा ना सके तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पा लिया।
0: क्या
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
0: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
1: तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया।
0: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले के लोगों में होती थी एक दूसरे के लिए, हाँ भाई हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में आपके सुख दुख में, आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हुई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है? इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है, दोस्ती में तवज्जो है आज भी वो? कुछ
1: कह सकते हैं,
0: कुछ कुछ है,
1: कह सकते हैं,
0: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
1: हाँ हर किसी को नहीं टकराते,
0: है ना, मजे की बात ये भी है।
1: हाँ।
0: और आजकल समय ऐसा हो गया है कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
1: बहुत ज्यादा।
0: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है, है ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते,
0: है ना।
1: अब जस्ट इमेजिन हर कोई, मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त भी,
0: मतलब तुम इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
1: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
0: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी के बस की बात नहीं है बॉस।
1: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
1: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी,
0: हाँ,
1: कोई ना कोई तो,
0: हाँ,
1: अब आपकी उसमें कहते हैं ना, मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उस पे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
0: अच्छा, मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
1: हाँ हाँ, हाँ क्यों नहीं,
0: हाँ, हाँ,
1: हंसते लोग बहुत देखे।
0: हाँ भाई, हाँ भाई,
1: हंसते लोग बहुत देखे, ना देखी उस जैसी हंसी,
0: क्या बात है,
1: हंसते लोग बहुत देखे ना देखे, उस जैसी हंसी खूबसूरत तो वो बहुत है, पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका।
0: वाह,
1: वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका है बहुत हंसी, पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी। अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच।
0: क्या
1: so
0: बात
1: much.
0: है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने, ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है।
1: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन में ये सी कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके।
0: भाई मत कर यार, मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा करना है। तो गाइज ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन है आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इस एरिया का। अमरोहा तुम्हारा आपकी आवाज है, बहुत प्यारा गाना है, उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके हिम्मत जाइए, सुंदरी आनंद को।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन सोनू निगम साहब की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक साथ में श्रेया घोषाल दे रही थी साथ, और यही गाना सुनते सुनते मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मेरे स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही प्यारे से हमारे शानदार स्पेशल मित्र मेहमान, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, बस जो भी शब्दों से मैं इनको नवाजूंगा वो कम ही होगा। यस, आज की ब्यूटीफुल इस शाम को शानदार बना रहे मेरे साथ मोहम्मद अजीम, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूं यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आइयो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा मानता, लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन्स रोल बहुत पसंद है।
0: विलन्स? आइयो मां, मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई। So, यार देखो ये थी जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुनी रहे हैं आप अजीम और मैं भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे? लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा यार, अजीम आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है, मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार जब इंसान बिना देखे प्यार करता था, उसकी आवाज से उसको इमेजिन करता था, आजकल क्या होता है ना प्यार बाद में, पहले लोग देखना पसंद करते हैं, पहले पिक्चर भेजो मैं देखना चाहता हूँ, पहले दिखते कैसे हो, एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना, और जो दिल से प्यार होगा ना उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, और जो ये तड़प है ना जो बेकरारी वही इश्क है ना, और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ जिसे हम कह सकते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन, इट्स नॉट लव इट्स अट्रैक्शन है ना, तो एक वो हो गया। लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया है ना, तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें। हाँ, जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं,
0: हाँ भाई,
1: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल हैं,
0: करेक्ट,
1: ठीक है ना, आपके पीछे पागल हैं, ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाती हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए तो बता देना, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना,
0: क्या बात है यार, वंडरफुल यार, हर बात पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा फिर तुम इंटरव्यू कर लेना, खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइस, और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में है ना, लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया यार, आजकल प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
1: सही बात
0: है ना, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
1: ये है, देखो डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
0: जो प्यार मोहब्बत करता है प्यार करता है,
1: अगर उसे मोहब्बत नहीं है तो वो,
0: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है ना,
1: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने,
0: गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है ना, लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने?
1: अब इस पे तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं, जैसे मोहब्बत चली गई बिछड़ गया, अब मतलब जैसे होता है ना प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
0: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
0: करेक्ट यार,
1: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे, कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा,
0: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनकी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार, जब नया नया प्यार होता है ना अजीम, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं। नया नया जब प्यार होता है, एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं, तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जब नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
1: तब तो मोहब्बत होती है। लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
0: हाँ, तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
1: तो तारीफ है उसके बालों की।
0: अरे वाह,
1: अब जैसे लड़की की बाल है, आपको आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना, भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
0: क्या बात है,
1: तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है,
0: उसके
1: भीगे भीगे बाल हैं, गाल भी अच्छे हैं, पर कसम से यार लाजवाब उसकी चाल है, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जी करता है मैं उनमें डूबा ही रहूं, लेकिन ये बात मैं उससे कैसे कहूं, ये बात मैं उससे कैसे कहूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, उसकी उसकी तारीफ में तो मैं पूरी किताबें लिख दूं, उसकी तारीफ में तो मैं किताबें लिख दूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, लेकिन यार मुझे जो उसमें सबसे ज्यादा पसंद
0: उसके भीगे,
1: है
0: उसके भीगे, भीगे बाल है। जी हाँ, क्या बात है, कहूंगा मम्मी से बेटे, समझ गया।
1: अम्मी से नहीं
0: गया। अरे नहीं नहीं, इट्स अ जोक से पारे। एनीवे, ये तुमने खुद ने लिखा है ब्रो?
1: हाँ, मैंने खुद ने।
0: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो। तो मतलब बता दे मुझे किसके भीगे भीगे बाल
1: है, कोई बहुत पसंद है लेकिन वो किसी और की पसंद है, मैं कैसे बता सकता हूं
0: भाई मुझे। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है। और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार।
1: हाँ,
0: तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है।
1: हाँ।
0: बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
1: मोहब्बत ही वही जो
0: बहुत, वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना। तो इस पे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें? कोई इंसान है जिसका प्यार उसे नहीं मिला है बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं, यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे, तो प्यार है।
1: अच्छा मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायरी।
0: हाँ,
1: लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
0: हाँ यार,
1: दूसरी की हो गई वो।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है।
0: करेक्ट।
1: तो उस पे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस, ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी। इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हैं मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है। तब मैंने उस पर लिखा था, वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल। यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग, और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
0: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया। तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम, आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज। और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना, इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए। एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे ही तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम?
1: क्यों नहीं,
0: कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहा हो?
1: भीगी भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
0: बट वो मुझे याद नहीं
1: याद
0: आ रहा
1: है। नहीं
0: आ रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
1: है
0: ना। लेकिन
1: अभी मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो
0: दिमाग में जुबान पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे, फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं, और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, एक बढ़िया गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजे भाई।
1: बिल्कुल यार, सही कहा आपने। मेरा नाम आनंद है यार वैसे।
0: आरजे भाई
1: भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी
1: तो मैंने नाम रखा यार। नहीं आएगा तो भी वो आनंद बोल के जाएगा।
0: खूबसूरत नाम।

0: पूछती है क्यों, पूछती है क्यों, अरे पगली वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या?
0: नहीं,
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: वो ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर्स से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, थैंक्स फॉर यू। नो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना, अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अरे अगर कहीं गलती है तो मुझे बताएं आप, मैं
1: बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपको सारी गलतियों की। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक शब्द तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हदी थी, तूने किसी और चाहा ये भी एक हदी थी, अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं, तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हक नहीं।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेर व शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट, और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे ना। और गाइज आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत के और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें, हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल, तो चलो गाइज मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
3: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
2: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
2: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
3: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
2: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
3: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
2: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
3: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
2: EKCC, साख से समृद्धि।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

பண்ணையாரு.

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, और आपका स्वागत है दिल से दिल तक अखिल संघ FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, हम लोग आज फिर मिले हैं, आज फिर दिल से दिल तक की होंगी बातें, और आपको बताना होगा कि आज कौन सा डे है ऐसा जिसे मनाते हैं वर्ल्ड वाइड पूरे जगह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। तो बताइए और हमें भी बताइए कि कौन सा ऐसी फेवरेट चीज़ है वो आपकी जो आपको बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कौन से कहते हैं ना आपकी फेवरेट चॉकलेट। हाँ जी, चॉकलेट डे है आज, ग्लोबली चॉकलेट डे है, और आपको बतानी है आपकी फेवरेट चॉकलेट और उससे रिलेटेड कोई कहानी, या कहानी भी नहीं है तो कोई तो बात होगी जो चॉकलेट से जुड़ी हुई होगी आपके साथ, 9837896896 पर। और आज के दिन इस चॉकलेट डे पे जो ग्लोबली मनाया जाता है, तो एक कहते हैं ना छोटी सी चॉकलेट भी कभी ना कभी इतनी बड़ी याद बन जाती है कि सालों बाद भी उसका टेस्ट सिर्फ जबान पर ही नहीं दिल में ही महसूस होता है। तो आज बताइए कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है और उस चॉकलेट से जुड़ी कोई भी खूबसूरत याद क्या है। फोन लाइंस आपको पता ही है, आपका फेवरेट नंबर 9837896896 मुरादाबाद का। एक शायरी इस गाने से पहले सुना देते हैं आपको, फिर एक चॉकलेट वाला गाना ही सुनेंगे। आज बताइए कौन कौन से गाने हैं जिनमें चॉकलेट आती है, तो पता भी चल जाएगा कि हाँ जी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है, अपनी डेयरी मिल्क में या फिर किटकैट में। चॉकलेट की तरह हो रिश्तों की मिठास, चॉकलेट की तरह हो रिश्तों की मिठास, ना हो कभी गीले शिकवे की प्यास, ना हो कभी गीले शिकवे की प्यास, हर मुस्कान में हो प्यार का रंग, हर दिन रहे खुशियों के संग। तो हाँ, खुशियों के संग तो रहना है और साथ में एक चॉकलेट भी रखनी है। अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और जेब में चॉकलेट है तो आज मज़ा आ जाएगा जी। एक फ़ोटो खींच के भेज दो उस चॉकलेट का, गाड़ी में बैठे हुए का पता हो, बैकग्राउंड में स्टेयरिंग ज़रूर आ रहा हो, ऐसे नहीं कि हाँ जी एक चॉकलेट का फ़ोटो खींच के भेज दिया। तो एक भेजिए और एक मस्त सा वाउचर आपको भी मिलेगा, बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर। और कहते हैं ना चॉकलेट खाते हैं तो मूड अपना आप मीठा हो जाता है, तो चलिए करते हैं मूड मीठा इस गाने के साथ।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अभी जी कुड़ी तो चॉकलेट है, मगर मुंडा भी तो चॉकलेटी होता है, नहीं होता है क्यों? आप कभी चॉकलेटी, आपको किसी ने कहा नहीं कि हाँ जी भाई साहब आप बड़े चॉकलेटी हो? अगर कहा है तो बता दो साहब, उसका भी कोई ना कोई किस्सा होता है। हमारे पास दोस्तों बचपन में चॉकलेट मिलना ना किसी अवार्ड से कम नहीं होता था। स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाए तो चॉकलेट, बर्थडे हो जाए तो चॉकलेट, और अगर कहीं जाना भी हो ना, रिटर्न गिफ्ट भी मिलना हो तो वहाँ भी चॉकलेट। तो चॉकलेट जो है मतलब एकदम ऐसा रहता था कि आज चॉकलेट डे ना भी हो ना तो भी भाई साहब हमारे लिए चॉकलेट ही चॉकलेट है। हमारा वो डे पूरा चॉकलेट से फुल रहता है। और कभी किसी से पहली बार थैंक यू या सॉरी बोलना हो ना तो चॉकलेट ही काम आती है, ये तो पता ही होगा। हमारे पास रितिका जी का मैसेज आता है मुरादाबाद से ही, MDA कॉलोनी से। लिखती हैं, मुझे डेरी मिल्क की सिल्क बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ने पहली बार प्रपोज करते वक्त एक चॉकलेट के अंदर रिंग छुपा दी थी। आज भी चॉकलेट डे पर वही चॉकलेट ज़रूर लाते हैं। क्या बात है, प्यार अगर चॉकलेट जैसा हो ना तो हर बार हर बाइट में आपको सरप्राइज होना ही चाहिए आपके पास। भाई साहब पूरा एक कहते हैं ना हैट्स ऑफ है भाई, चॉकलेट के रैपर में वो रिंग लेकर आ गए प्रपोज के लिए। चलिए हमारे एक लिसनर है जो हमसे जुड़े हैं और करते हैं उनसे बात, क्या कहते हैं वो। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग। हेलो, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं, बस बैठी हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम प्राची।
0: प्राची, कौन सी चॉकलेट पसंद है आपको?
1: प्राची नहीं, स्वाति।
0: स्वाति, स्वाति सही बोल रहा हूँ मैं? स्वाति,
1: स्वाति।
0: तो स्वाति ये बताओ चॉकलेट कौन सी पसंद है?
1: डेरी मिल्क।
0: तो डेरी मिल्क में भी बहुत सारी आती है, कोई ऐसा फ्लेवर जो डेरी मिल्क में बिल्कुल पसंद हो? डार्क चॉकलेट या फ्रूट चॉकलेट?
1: डार्क वाली।
0: डार्क वाली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? फिफ्थ क्लास में। तो चॉकलेट कब कब खाती हो? जब कोई गिफ्ट में देता है या कभी पापा से जिद करके या कभी मम्मी से जिद करके? कैसे खाती हो चॉकलेट? तो पापा से जिद करके मंगा लेती हो, है ना?
1: हेलो,
0: मैं कह रहा हूँ पापा से जिद करके मंगवा लेती हो आप चॉकलेट?
1: क्या?
0: पापा से जिद करके मंगा लेती हो आप चॉकलेट?
1: चॉकलेट?
0: पापा से जिद करके मंगवाती हो या पापा ले आते हैं अपने आप ही? क्या?
1: मैंने क्या बोला? समझ में नहीं आया।
0: आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो ये बताओ आप कि आप क्या पापा से जिद करके मंगाती हो चॉकलेट या पापा अपने आप ही ले आते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप? तो इस पर डांस भी करोगी? तो इसका डांस करते समय एक वीडियो बना देना, एक चॉकलेट हम देंगे आपको अपनी तरफ से, ठीक है? हमारा नंबर तो आपको पता ही है, हमें आप व्हाट्सएप कर देना, पूरा ही सुनाऊंगा मैं, ठीक है? ओके स्वाति। तो श्रोताओं, हमारे साथ थी छोटी सी नटखट सी स्वाति जो अभी है फिफ्थ क्लास में और कहती है मुझे डेरी मिल्क की चॉकलेट बहुत पसंद है भैया, पापा जो हैं मेरे लिए लेके आते हैं, कभी कभी तो मैं मंगवा लेती हूँ ज़बरदस्ती, और कभी कभी पापा मुझे पैसे दे जाते हैं तो मैं भाग के जाके दुकान से ले आती हूँ। तो ठीक है स्वाति, बढ़िया सी है आपकी और हमारी बात हुई है। आप एक बनाएंगी वीडियो इस गाने पे, आपके फेवरेट सॉन्ग पे, और हमें भेजेंगी 9837896896। तो चलिए सुनते हैं उनका ट्रैक।

0: वेलकम बैक है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, तो अभी बातें चल रही हैं हमारे साथ चॉकलेट की। चाहे चॉकलेट का कोई सा भी फ्लेवर हो, मीठी तो हमेशा रहती है। वो डार्क हो, लाइट हो, फ्रूट एंड नट हो या मैंगो हो, अरे हाँ हाँ मैंगो फ्लेवर भी आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी आते हैं, तो किटकैट भी होती है। तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना, हर जगह कुछ ना कुछ मिठास छुपी होती है। हमारे साथ जुड़े हैं नईम साहब कश्मीर से, तो चलिए उनसे करते हैं बात, कहते हैं क्या हुआ चॉकलेट के ऊपर स्पेशल। हेलो दिल से दिल तक नईम साहब, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छा हो सर, आप ठीक हो सर?
0: सब बढ़िया सर, क्या हो रहा है नईम जी?
1: बस बेटा वो सर अभी काम से आया, दुकान शॉप ने अभी बंद किया है लगभग 15 मिनट पहले, तो उसके बाद मैंने तुरंत मोबाइल ऐप पर आपका शो सुना।
0: धन्यवाद। तो आप मोबाइल ऐप पे जो सुनते हैं, एक बार हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें भी एक बार बताइए कि मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड कर लें, गाड़ी से निकलने के बाद अगर जुड़ना चाहते हैं और कुछ अच्छे गाने और साथ में सुनना चाहते हैं तो कैसे ऐप डाउनलोड करें।
1: जी मैंने एक हिंदी ऐप डाउनलोड किया था, उसके जरिए हमें बहुत सारी जो ये रेडियो स्टेशन मिलते हैं हिंदी एफएम रेडियो एचडी मैंने डाउनलोड किया था सर।
0: हाँ, तो प्ले स्टोर पे जाके आपने बस अपना एफएम मुरादाबाद 89.6 लिखना है और हमारा आइकन आ जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें प्ले स्टोर में जाना है, तो उसके बाद और मजा आता है जब रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, तो फिर देश विदेश से जब कॉल आती है तो एक जानकारी भी मिलती है कि उस इलाके में उस शहर में क्या मशहूर है और कौन सी चीज मशहूर है। रेडियो के जरिए इन चीजों को मिलता है सर, सोशल मीडिया के जरिए नहीं मिलता है, तो रेडियो के जरिए मिलता है मुझे।
0: जरूर नहीं सर, जरूर। तो बताइए कोई चॉकलेट वाली बात, जो आपने पहली बार चॉकलेट खरीदी थी या पहली चॉकलेट किसी को गिफ्ट में दी थी, या कोई ऐसी चॉकलेट जो आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के पास हो।
1: एक बहुत सारी चॉकलेट चॉकलेट भी बनते हैं अक्सर, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे पहला चॉकलेट मुझे जो मेरा बन जाए तो उसने बहुत जिद किया था। एक बार मैं शॉप पर था, वो भी आया था, तो वो बहुत ही छोटा था, लगभग 2-3 साल उनकी उम्र थी, तो वो आया था तो उसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया। तो फिर चला गया था मैं शॉप पर, तो मैंने उसको बोला कि उसको एक चॉकलेट दीजिए, और सबसे पहले चॉकलेट मैंने अपने बाजू को ही दिया। और चॉकलेट पर मुझे एक बात है, जब मैं स्कूल जाते थे तो हम चॉकलेट खाते थे, उस वक्त 2-3 रुपये चॉकलेट मिलते थे, और अक्सर हम जब बच्चे चॉकलेट खाते थे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा झगड़े करते थे।
0: चॉकलेट खाना खाने, चॉकलेट खाने के बाद झगड़े होते थे या चॉकलेट खाने से पहले ही झगड़े हो जाते थे?
1: नहीं, चॉकलेट खाने से पहले ही झगड़े, इतने झगड़े होते हैं जो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म होते है, तो हम जो बटन होते हैं यूनिफॉर्म के बटन होते हैं, एक दूसरे तोड़ते हैं, बटन को तोड़ते थे, झगड़ा करते थे एक दूसरे के, छोटे थे क्योंकि वो कहते हैं कि आपने चॉकलेट लाया तो सबसे पहले मुझे दीजिए, मैंने कहा कि मेरे पैसे हैं यार।
0: अरे देखो साहब, चॉकलेट देखो कैसी अच्छी मीठी याद है ये, जो चॉकलेट से आपके साथ जुड़ी हुई है, और जितनी मीठी चॉकलेट नहीं होगी ना उससे ज्यादा मीठी ये याद है आपके साथ उसकी।
1: बिल्कुल, बचपन की जो ख्याल होती है, बचपन के जो दिन होते हैं, एक ये तो अलग ही दिन होते हैं सर।
0: बिल्कुल सही,
1: इनका दिमाग भी फ्री होता है, बच्चे का दिमाग भी फ्री होता है, क्योंकि ना उनको जन्नत चाहिए ना उनको जहन्नम चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, मस्ती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया बात कही नहीं साहब। तो आज हम कौन सी फरमाइश का गाना चलाएं आपकी?
1: क्योंकि बच्चे आखिर इस वक्त बच्चे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कश्मीर से एक वाला आई थी, तो कोई चॉकलेट वाला गाना मुझे सुनाए, आज अपनी पसंद आप ही छोड़ता हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा, मैं अपनी पसंद का सुना दूं कोई? चलिए जरूर, आपके शो खत्म होने से पहले आज मैं अपनी पसंद का एक गाना नईम जी आपके लिए भी जरूर डेडिकेट करूंगा और जरूर सुनाता हूँ सभी छोटे बच्चों के लिए भी।
1: थैंक यू
0: नईम जी। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे नईम जी कश्मीर से, और वो कहते हैं कि मैंने पहली बार जब अपने भांजे को चॉकलेट दी थी तो उस पर भांजे के साथ ही मस्ती हो गई थी चॉकलेट के ऊपर, कि भैया भांजा कह रहे चॉकलेट पहले मामा मैं खाऊंगा, मामा कह रहे नहीं जी चॉकलेट मैंने दिलाई है तो मैं भी खाऊंगा। तो होता है मामा भांजे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि मस्ती ना हो उसमें और चॉकलेट को लेके तो कुछ और ही बात है। चलिए सुनते एक बढ़िया सा गाना और आपके भी मैसेजेस आ रहे हैं और उन मैसेजेस के भी ऊपर बात करेंगे, तब भी आप एक 9837896896 पर छोटी सी अपनी चॉकलेट की स्टोरी हमें जरूर बता सकते हैं। और हाँ, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके बताएंगे तो और ही मजा आएगा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार प्यार और चॉकलेट में क्या फर्क है? तो दोस्त बोला, चॉकलेट खत्म हो जाए तो दूसरी मिल जाती है, और प्यार खत्म हो जाए तो गाने ही सुनने पड़ते हैं। तो ये तो सही है साहब, अगर प्यार खत्म हो जाए तो गाने तो सुनने पड़ेंगे, और मुरादाबाद FM आपको गाने बढ़िया से बढ़िया सुनाता है। तो चलिए मिलते हैं इस गाने के पार, तब तक आप हमें मैसेज करें 9837896896 पे, कौन सी है आपकी फेवरेट चॉकलेट, क्योंकि मिलेगा उस पर कोई ना कोई गिफ्ट वाउचर।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहो और गुनगुनाते रहो। एक छोटी सी चॉकलेट ने सिखा दिया, एक छोटी सी चॉकलेट ने सिखा दिया, खुशी बताने से बढ़ जाती है, खुशी जो है बताने से बढ़ जाती है, और प्यार अगर सच्चा हो तो हर मुलाकात याद बन जाती है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह साहब, रैंडम आया था इसलिए आपको रैंडम बता दिया है मैंने, और मैसेजेस में पता चल गए भाई साहब किसको कौन सी चॉकलेट पसंद है। वैसे तो चॉकलेट डे हम मनाते हैं 9 फरवरी में जब चल रहे होते हैं वैलेंटाइन वीक, मगर ये जो चॉकलेट डे है ये है ग्लोबली चॉकलेट डे, जो पूरा वर्ल्ड सिर्फ स्पेशल डेडिकेटेड कहते हैं ना, जैसे कोई सा भी डे मदर्स डे फादर्स डे, तो ऐसी ही एक डेडिकेटेड चॉकलेट डे बन गया आपका ग्लोबली। और हमारे साथ रणवीर जी मुरादाबाद यूपी से मैसेज करते हैं, जो दिल पर गुजरी वही कागज पर उतर गए, कुछ जख्म थे जो आंसुओं के साथ बिखर गए। हाँ रणवीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा ना आप हमारे रणवीर जी का अगर मैसेज नहीं आए तो हमें भी लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं बिखर गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। तो धन्यवाद रणवीर जी, आप इतने प्यारे प्यारे शायरी और हमें मैसेजेस करते रहते हैं। हमारे पास हमारे एक लिसनर हैं राहुल जी, रामपुर से मैसेज कर रहे हैं, मेरी मम्मी हर एग्ज़ाम के दिन पॉकेट में एक्लेयर्स रख देती थी, कहती थी पेपर भी मीठा ही जाएगा। देखा, चॉकलेट सिर्फ टेस्ट नहीं है, ब्लेसिंग्स भी होती हैं राहुल जी। तो ये भी एक छोटा सा टोकन ऑफ ब्लेसिंग था कि चॉकलेट रख दी, टॉफी रख दी एक्लेयर, और कह दिया बेटा पेपर भी आज बहुत बढ़िया जाएगा। तो होता है चॉकलेट से कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जुड़ाव होता ही है। तो हमारे साथ एक लिसनर है, हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे बात, देखते हैं वो क्या करते हैं आज चॉकलेट के ऊपर। नमस्कार दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं सुरेंद्र जी आप?
1: हम बढ़िया साहब, आप बताइए।
0: बताइए आप किधर मुरादाबाद में कहां से बोल रहे हैं?
1: जी हम IFC गोदाम के पास से पुतली कोट चौराहे से बोल रहे हैं, हमारी टिकट दुकान है।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: ये ऐसी है कि जैसा आप मोटर वगैरह पंखा वगैरह आप सही करा सकते हैं।
0: क्या बात है साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है आज के समय में, अगर कहीं भी कहीं एकदम मोटर खराब हो जाए तो भाई साहब,
1: कूलर पंखा कोई खराब हो गया आप सही करा सकते हैं।
0: जरूर साहब, जरूर जरूर, ये तो कभी भी चीज ऐसी होती है बिना बताए खराब हो जाती है
1: जी, क्योंकि लाइट इस समय ऐसी होती है कभी वोल्टेज कम कभी ज्यादा, बरसात का समय चल जाता है
0: तो कभी कभी ऐसा हुआ है कोई कस्टमर को जब ज्यादा टाइम लग गया तो आपने कहा जी भाई साहब, जब वो वापस लेने आया मोटर वोटर तो आपने उसे साथ में चॉकलेट भी दी, भाई साहब कुछ खाए और मीठा होके जाए?
1: नहीं, हम ये कर देते हैं कि उनके लिए ऐसा कर देते हैं, चॉकलेट वगैरह तो हमने आप उनको नहीं दी, लेकिन हम ये कर देते हैं कि हमने अगर उनको 500 रुपए बताए तो हम 50 रुपए या 100 रुपए उनको छोड़ देते हैं, वो अपने कुछ भी चीज खा सकते हैं।
0: हाँ सही है सही है, ये भी अच्छा है, ये भी साहब, ये भी कुछ मीठेपन से कम नहीं है
1: जी।
0: तो आज सुरेंद्र जी
1: हमारे तरफ से जितना हो सकता है कि हम उतना ही उनके लिए कर सकते हैं। देखो गर्मी के मौसम में ये होता है, सब लोगों को जरूरत होती है कि पंखे कूलर वगैरह सबके अच्छे चले।
0: हाँ साहब,
1: अपना आराम से रह सकते हैं, हवा में लेट सकते हैं, सो सकते हैं,
0: गर्मी में कुछ और चले ना चले पंखा और कूलर तो जरूर चले
1: जी।
0: कह रहा हूँ गर्मी में सर कुछ चले ना चले पंखा और कूलर तो जरूर चले
1: जी। जी जी जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है गर्मी के मौसम में।
0: बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी आपने,
1: हर बंदे के पास पंखा जरूर होना चाहिए।
0: हाँ, और वैसा इलेक्ट्रिक वाला पंखा ना हो तो हाथ वाला पंखा तो जरूर हो।
1: अगर इस चीज को कौन चलाना पसंद करता है, क्योंकि एक बात ये भी है सर, क्योंकि बंदे के पास काम भी बहुत ज्यादा है, थक जाते हैं, तो इस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे।
0: आज आपके पास कैसा काम था? आज आप भी मुझे थके थके से लग रहे हैं रणवीर जी, सुरेंद्र जी।
1: जी हमने जो काम किया आज, हमने जो लाइट का फिटिंग का काम किया है।
0: हाँ जी,
1: तो मकानों में जीजी काट के उसमें पाइप लगाते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो वो भी हम काम करते हैं, हमारी दुकान से काम होता है।
0: चलिए बहुत बढ़िया साहब,
1: जो भी लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आप एक बार फिर से बताइए, संपर्क करना चाहें आपसे तो कहाँ संपर्क करें?
1: आपको नंबर बता देते हैं।
0: हाँ नंबर बताइए
1: जी,
0: अपना ही नंबर बताइएगा साहब सुरेंद्र जी, कभी हमारे एफएम का नंबर 9837896896 पे कह दें साहब आज आ जाओ पंखा सही करने।
1: नहीं मेरे नंबर पे आप कॉल कर लेना, यही नंबर है मेरा।
0: बताइएगा सर।
1: 9917 65 65 46 46 96 96।
0: तो जिनको ध्यान रहा है तो भाई साहब जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा, और जिन्होंने लिख लिया है वो जरूर सुरेंद्र जी से संपर्क कर लीजिएगा। तो सुरेंद्र जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अब आप?
1: सर जी गाने की तो फरमाइश हमारी ये है कि बरसात के हिसाब से आप गाना अपने तरफ से सुना दीजिए।
0: बरसात के हिसाब से, ठीक है साहब
1: जी। आप ये समझिए आपके यहाँ बारिश हुई है, हमारे यहाँ पे बारिश हुई है मुरादाबाद में आज।
0: हाँ जी।
1: और मौसम कैसा रहा है आज का ये बताइए?
0: आज मौसम बहुत अच्छा रहा है, और मौसम ऐसा रहा है कि आप बाहर निकल के घूमना चाहे, शाम को लोगों ने बहुत आनंद लिया है, कोई ना कोई अपनी गाड़ी से अभी भी मौसम का आनंद ही ले रहे हैं लोग। और
1: अच्छा लगा आज बारिश हुई, बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पहले हवा आई उसके बाद में बारिश हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को सुकून मिला, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मनुष्य के लिए उन्होंने कुछ तो किया।
0: धन्यवाद साहब धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र जी आपने हमें कॉल किया, और ऐसे ही कॉल करते रहिए, और ऐसे ही हमें भी थोड़ा बहुत कहीं अगली बार बताते रहिएगा कुछ ना कुछ, कहाँ अगर कोई चीज खराब हो जाए तो कैसे उसको सही किया जा सकता है और कैसे रखा जा सकता है।
1: जी जी साहब ठीक है, बता देंगे आपको।
0: ठीक है। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी जो जुड़े थे, वो बता रहे थे कि वैसे तो मैंने कभी ऐसे चॉकलेट दी नहीं या चॉकलेट के ऊपर कुछ बात इन्होंने ऐसी कही नहीं, मगर कहते हैं कि जब भी उनके पास से कोई कस्टमर आता है और उन मोटर सही करा के जाता है और कुछ कराता है तो वो ज़रूर कहते हैं कि कोई डिस्काउंट हो, और डिस्काउंट की जो मनी हो उससे कुछ ना कुछ टॉफ़ी चॉकलेट ज़रूर ले लेना। तो ऐसे भी लोग हैं, और कितना अच्छा मैसेज दे के गए कि गर्मी का समय है तो कोशिश करें पंखा अपना मोटर अपना फैन और अपना मोटर को सही करा के रखें जिससे आपको हवा मिलती रहे। और कहा है उन्होंने कि गाना तो अपनी मर्जी का चला देना आप, कोई सा भी आपकी पसंद का गाना, मगर हमारे पास मैसेज आया हुआ है और मैसेज में लिखा है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इनके हर बार जो होते हैं ना पाँच प्लीज़ तो होते ही होते हैं, चार से पांच प्लीज तो इनके मेरे पास आते ही आते हैं। प्ले शरारत सॉन्ग, नेम नमन यादव, शंकर लाल यादव, अमित यादव एंड रितु यादव। तो रितु जी जरूर आपके इस प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज पे जरूर हम जाने से पहले एक गाना प्ले करेंगे, और इस चॉकलेट डे पे ये गिफ्ट तो आपको जरूर मिलेगा। तब तक आप लोगों के लिए है कि बताइए डार्क चॉकलेट है तो सीरियस है या मिस्टीरियस है, डेयरी मिल्क है तो क्या वो रोमांटिक है, अगर किटकैट है तो ब्रेक लेना पसंद है, फाइव स्टार है तो कौन सा स्लो मोशन जो है आपकी लाइफ में चल रहा है अभी, मैसेज भेजिए और बताइए आप कौन सी चॉकलेट वाले पर्सन हैं। ठीक है ना, पता तो दिया ही है मैंने, ज़रूर मैसेज करिएगा 9837896896 पे। तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: एक बार फिर से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, ना महंगे गिफ्ट्स की जरूरत होती है ना बड़े सरप्राइजेस की, कभी एक चॉकलेट और सच्चे दिल की मुस्कान ही काफी होती है। क्या खूब कहा है उदिता जी ने कि महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं होती है और ना ही कुछ बड़े सरप्राइज की, छोटी सी चॉकलेट भी दिला दोगे ना भाई साहब, सारे काम आसान हो जाते हैं। और हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं और कहते हैं कि मेरी भी बात करिए भैया, मैं भी जरा आज कुछ बताना चाहता हूँ चॉकलेट के ऊपर, तो देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग।
1: हेलो
0: सर, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप मुरादाबाद में?
1: मेरा नाम है राजा कश्यप, मैं रहता हूँ मंडी से सराय गली।
0: क्या बात है राजा कश्यप जी, तो क्या करते हैं आप?
1: मैं काम सीख रहा हूँ।
0: कौन सा काम सीख रहे हैं आज, आप सभी को बताइए, आज हमें भी पता चले आप कौन सा काम सीख रहे हैं।
1: वेयर मशीन का काम सीख रहा हूँ।
0: क्या बात है, मंडी का?
1: नहीं नहीं, लेजर मशीन का काम सीख रहा हूँ।
0: लेजर मशीन का?
1: क्या
0: क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया सर। तो कोई बात पता है आपको आपकी चॉकलेट से रिलेटेड कि आपने पहली बार चॉकलेट कब खाई थी या किसी को खिलाई थी?
1: हमने दोस्त को खिलाई थी।
0: आपने दोस्त को कब खिलाई चॉकलेट?
1: उसके बर्थडे पे।
0: अरे साहब, तो भाई साहब आपने गिफ्ट के नाम पे चॉकलेट खिला दी और अपना काम बना लिया है ना।
1: चॉकलेट खिलाई फिर एक और गिफ्ट
0: हो दिया। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया, ऐसे भी दोस्त होने चाहिए जो आपको आपकी बर्थडे पे गिफ्ट पे गिफ्ट ही देते रहे फिर तो। तो कोई और आपके साथ कोई ऐसी बात जो चॉकलेट से आपको याद रही हो दोस्ती के अलावा?
1: दोस्ती के अलावा
0: कभी अच्छे मार्क्स आए हो तो चॉकलेट आ गई हो, पापा ने चॉकलेट दे दी हो, भाई साहब आज चॉकलेट खा लो तुमने बहुत दिल खुश कर दिया, 100 में से 100 लिया है।
1: हमने पतंग उड़ाते ना,
0: हाँ
1: पतंग उड़ाने एक बार हमने लगातार 7 पतंग काटी, तो हमारे साथ जो खा रहे थे पतंग उन्होंने हमें चॉकलेट खिलाई थी।
0: पतंग जिसकी कट गई थी पतंग उसने खिला दी चॉकलेट या जो साथ में पतंग उड़ा रहे थे उसने खिला दी चॉकलेट?
1: उड़ा रहे थे हम किसी और से पेश चढ़ा रहे थे, तो हमने लगातार 7 पतंगे काटी थी एक पतंग से।
0: क्या बात है साहब, आपने तो ये मुरादाबाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया लगता है, 7 पतंगे एक साथ काट दी आपने।
1: नहीं,
0: चलो मगर अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो काटने पे कुछ तो मिला।
1: ये तो है।
0: तो और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप? चॉकलेट तो अभी दे नहीं सकते मगर ये गाना तो बताइए। सही है साहब, तो आज आपने जितने भी आपके दोस्त जो पतंग उड़ाते हैं आपके पतंगबाजी में आपके साथ रहते हैं तो सभी के नाम बताइए फिर।
1: हेलो,
0: नाम बताइए अपने दोस्तों के जिन्हें आप डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: आरव अग्रवाल
0: और
1: मोनिक शर्मा
0: और
1: राजा कश्यप, वो मैम।
0: तो आपकी तिकड़ी जो है, आप तीनों की तिकड़ी जो है बिल्कुल सब पे भारी रहती है। चलिए राजा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। पतंग उड़ाते समय ध्यान रखिएगा अपना कि बस पतंग ही कटे और कुछ ना कटे। ठीक है, ठीक है राजा जी। तो राजा जी थे हमारे साथ जुड़े हुए श्रोताओं और कहते हैं कि चॉकलेट उन्होंने अपने दोस्त को खिलाई है, उसी को चॉकलेट लगाई भी है। तो भाई साहब इन्होंने एक पल दो काम कर दिया, इन्होंने

ही चॉकलेट से उसको बर्थडे गिफ्ट भी कर दिया और एक ही चॉकलेट से उसका मुंह मीठा भी कर दिया। और पतंगबाजी का बहुत शौक है इनके साथ इनके जो दो, एक बार में 7 पतंगे काट दी साहब, उसके बाद चॉकलेट मिली। तो देखो जी, चॉकलेट का ना किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। कहते हैं कि कुछ अच्छा करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, तो चॉकलेट भाई साहब ऐसे नहीं मिलती है, कभी कभी 7 पतंगे भी काटनी पड़ती हैं आपको। तो चलिए सुनते हैं राजा जी का फेवरेट गाना, उनका पसंदीदा गाना जो उन्होंने अपने दोस्तों के लिए डेडिकेट किया है। हमारे पास नेहा जी बरेली से मैसेज करती हैं, मेरे पापा हर सैलरी वाले दिन हम सबके लिए एक चॉकलेट लेकर आया करते थे, बस आज पापा नहीं है मगर लेकिन चॉकलेट डे आता है तो उनकी याद ज़रूर आती है। तो नेहा जी, कुछ चॉकलेट सिर्फ मीठी नहीं होती, वो यादों को कहते ना जो याद दिला देती हैं और एक तरीके से उन यादों को आपके साथ बिल्कुल एकदम सहेज के रख देती हैं और उन्हें खोलते ही बचपन की बातें भी लौट आती हैं। तो हैं यादें जुड़ी हुई और हम चाहेंगे कि चॉकलेट तो आप खाते रहें, क्या पता इसी बहाने पापा जो हैं आपको खुश होते रहें और याद करते रहें। तो चलिए मिलते हैं इस गाने के बाद जो हमारे राजा जी ने फरमाइश की है। आप भी अपना कोई मैसेज, कोई भी एक बात, कोई भी एक याद हमें 9837896896 पे कर सकते हैं।

दोस्तों, जिंदगी भी चॉकलेट बॉक्स की तरह है। कुछ पीसेस बहुत मीठे होते हैं, लेकिन हर फ्लेवर कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। इसलिए प्यार बांटिए, मुस्कान बांटिए और कभी कभी चॉकलेट भी बांटिए। हमारे पास रीना जी शायरी लिखती हैं। ये रीना जी वो वाली रीना जी नहीं है, ये रीना जी रामपुर से हैं और कहती हैं, हर रिश्ता चॉकलेट से मीठा हो, हर खुशी दिल के करीब हो, ना आए कभी उदास, ना आए कभी उदासी की रात, बस मुस्कुराहट ही आपकी पहचान हो। तो क्या खूब लिखा आपने रीना जी। और दोस्तों, इसी प्यारी सी मिठास के साथ आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और हम मिलेंगे कल फिर एक नए एहसास, एक नए टॉपिक के साथ और ढेर सारी दिल की बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें, अपनों का ख्याल रखें और याद रखिए, दिल जुड़ते हैं बातों से और बातें होती हैं दिल से दिल तक, अखिल संग। और हाँ, जो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो अपनी फेवरेट टीम को भी चेयर करते रहें, क्योंकि जल्द ही फाइनल भी आ जाएगा जब ये सारे मैचेस एक बार फिर से अपने अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे पता है कोई ना कोई मेस्सी का फ़ैन है, कोई ना कोई रोनाल्डो का फ़ैन है। रोनाल्डो के फ़ैन तो इस समय थोड़े से मायूस होंगे, मगर जो मेस्सी के फ़ैन हैं वो ज़रूर अपने गोल पे नज़र रखे होंगे। तो एक गोल तो साहब आपको भी करना है। तो चलिए साहब, मिलते हैं जल्दी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और हैप्पी चॉकलेट डे आप सभी को एक बार फिर से।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
4: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: sunny day.
1: It is a sunny day.
0: Oh, sunny shades day, yaar.
1: Yaar, sorry.
0: और फिर मिला है तुलसी ने?
1: कितने है ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को भी अता पता है ही नहीं यार।

बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना डर के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: भाजलो थोड़ा भाजिलो थोड़ा थोड़ा मारलो
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जीलो थोड़ा

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।